और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा

कई बार आपसे मैंने कहा भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिना

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी ना करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है,

वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती। और कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का, और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है? जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है? ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है। भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है, और मन लगे ना लगे तो भी करना है। भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए। अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए। रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा। नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने। बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा। तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

बोल लो। और यह रुचै मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है। सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचै मुख नाम ना आवे। तो भी संसार रुचता है, पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूँ शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूँ कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है, लेकिन संसार नहीं छोड़ना है। ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो। श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूंछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है, पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है। क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है, तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई। मन लागो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई। आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा? कितना क्षण भंगुरी

हरि का नाम रटले री रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए, और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो समय पर करो मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूँ कौन है सचु पाए। और आज महाराज श्री ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ वर्ड हमारे कान में ऐसे आते हैं जो माइंड में स्टक हो जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पे तुषार है आपके साथ, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिस्टर, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जो बहुत कॉमन शब्द इंटरनेट के जमाने पे हम सुन रहे हैं, हीलिंग। अब हीलिंग का असली मतलब क्या है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चलते रहते हैं, बट रियल और एक्चुअल मीनिंग आज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी, जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे पहले ही लगा है, मीन्स आप, उसके बाद ऑल लगा है यानी सारा। तो आप अपने आप को सारा ही बिल्कुल फ्रेश कर सके, हील मीन्स पूरा का पूरा ही अपने आप को अपने ठीक कर लिया है। तो हीलिंग जो शब्द है बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें आपको अपने हायर लेवल को भी हील करना है। हम नॉर्मली समझते हैं कि फिजिकल जो पार्ट है, चलो और डीप हम आज जाने लगे हैं, हम EQ तक पहुंच चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें लोग इमोशंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं और इमोशंस को हील करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी और ऊपर जाने की ज़रूरत है अभी हमारे समाज को, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेते हैं तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको टैकल करने में हम काफ़ी हद तक बहुत सशक्त हो चुके होंगे, एम्पावर्ड हो चुके होंगे। और इसीलिए हीलिंग जो वर्ड है ये बहुत डीप है, इसको सिर्फ हल्के में ना लीजिए।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, पहले तो ये टॉपिक पे इतनी ब्रीफली हमको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज्ञान है वो मुझे लगता है आधा अधूरा ज्ञान है, और जो आपने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हीलिंग के बारे में वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ, और जितने लिसनर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प करेगा उनकी इस हीलिंग जर्नी में आगे। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो कुछ गानों के बाद, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बाद हम अपने लिसनर्स के सामने रखेंगे, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
2: हो गया

0: में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
3: पुलिस,
2: पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।

0: मेरे ओपिनियन में स्ट्रेस की कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकती। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, स्ट्रेस और एक इमोशनल पेन, ये दो टर्म्स हम अब इंटरनेट के जमाने में या गूगल सर्च के जमाने में हम बहुत सुन रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि हमने दवाई दी और स्ट्रेस दूर हो गया, या हमने दवाई दे दी तो हमारा इमोशनल पेन जो है वो दूर हो गया। बट क्या मेडिटेशन वो टूल बन सकता है जो आपके इमोशनल पेन या स्ट्रेस को हील कर सके? क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था।
1: हीलिंग की बात करें तो बिल्कुल मेडिटेशन हमें हील करता है और ये बहुत जो कहें बेस्ट टूल है हमें हील करने का, क्योंकि जब भी बात आती है हम फिजिकली तो योगा कर लेते हैं लेकिन फिजिकली हम फिट होते ही अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी तो वो हमें फील हो जाती है। अब उस फीलिंग से बचने के लिए अब हमारे को कैसे हम उससे बाहर आए, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट जो है वो टूल है कि हम उस समय पर अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशन दे कि वो नेगेटिव जो बात मेरे पास आई है, जो मुझे फील हुई है, उसको हम छोड़ सके और अपनी हीलिंग की तरफ जाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, एक बहन जिसको कैंसर पेशेंट रही है वो, उन्होंने अपने, वो बहुत अच्छी डांसर रही, तो वो जब भी बैठती थी मेडिटेशन में वो ये कहते थे कि मैं अपने कैंसर के जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ये असुर हैं और मैं देवी हूँ और मैं इनको मार रही हूँ और ये ख़त्म हो रहा है। और सच में ही उसने अपने कैंसर पर जीत पाई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसके थॉट ने काम किया, लेकिन मेडिसिन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो थॉट थी, जो उसने हील के लिए प्रोसेस किया, और वो स्पेशली मेडिटेशन के ही टाइम पर जब वो मेडिटेट करती थी तभी वो अपने आप को ये थॉट देती थी कि मैं जो हूँ वो देवी हूँ और इन जो है जंप्स को असुरों की तरह मैं मार रही हूँ। वो उस चीज़ को विजुलाइज करती थी और जैसे जैसे विजुलाइजेशन थी, टाइम कम टाइम में उसने अपने आप को हील कर लिया। तो मेडिटेशन तो बेस्ट टूल है।
0: इसका एक एग्जांपल हमने शायद स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एक लास्ट लीफ करके एक पोइट्री होती थी कि वो एक पेशेंट था, वो बहुत बीमार हॉस्पिटल में था तो उसने होप छोड़ दी थी, तो एक पेंटर ने उसके बेडरूम के सामने वाली दीवार पे एक आर्टिफिशियल पत्ती बना दी थी, लीफ बना दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये पत्ती झड़ेगी नहीं तुम नहीं मरो, और वो पत्ती कभी झड़ती नहीं क्योंकि वो पेंट था, तो इसी बहाने वो सरवाइव करके निकल आया।
1: बिल्कुल वही थॉट था जो थॉट ने उसको हील कर दिया।
0: वैसे तो देखिए, आपका जो इमोशनल पेन है या आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कोई चीज रिलीफ नहीं कर सकती है, बट हाँ आपको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर मेडिटेशन ले जा सकती है, जो यहाँ पर सिस्टर्स की बात से मेरे को लगा, और अगर हम उसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी करने लग जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी है। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

0: आज मैं एक टिपिकल ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन नेचर की बात आपसे करने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। सिस्टर, एक हीलिंग टर्म के साथ मैंने चीज और सुनी है कि इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आके चीजें करने की आदत रखता है। तो हीलिंग के साथ भी सेम प्रोसेस होता है, जब वो बहुत बाल्टी में पानी ऊपर तक भर जाता है इमोशंस का, तब वो सोचता है कि नहीं, अब मैं हीलिंग को अपना लूं। बट तब तक क्या लेट हो चुका होता है? और ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान की लाइफ में रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए या वन टाइम में काम हो जाता है?
1: आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद ही भरे हुए हैं और हम उनके आगे ही जाके ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी फुल हैं उन्हीं चीजों से जिनसे हम भरे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट अपना फ्रेंड बन जाए, अपने आप का खुद का दोस्त बने। और दूसरा, हमें सब को, और हम सब भारत में हैं या किसी भी आप जगह पर जाके देखें तो सब जगह पर सबसे पहले गॉड को याद किया जाता है, परमात्मा को। दूसरा हीलिंग सोर्स, हमारी बातें सुनने वाला वो परमात्मा है। हम उन दोनों को छोड़ करके हम लोगों को हम सुना रहे हैं, इसीलिए आज हम शायद हीलिंग हो ही नहीं हो रही है, हमारी हीलिंग हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा, जिसके पास भी जाते हैं वो अपनी सुनाना शुरू कर देता है, हम भी बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी ऐसे हैं, तो वो चीज हमें और इरिटेट कर देती है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को हील करें कि नहीं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, जो भी चीजें हैं मुझे वो सॉर्ट आउट करनी है। अपनी बातों को डायरी पे नोट करें, जो डायरी लिख सकते हैं वो लिखे, नहीं है तो जिसे भी आप अपने आप को इष्ट मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके पास जा करके अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिलता है, जो कहीं पर आपकी बात को बोलेगा भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगा। वो भले खुद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें देता है। और दूसरा, अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव हों, हम अपने लिए नेगेटिव हैं, पहले अपने अच्छे दोस्त बने, फिर हमारे से अच्छा हीलिंग और कोई नहीं कर सकता।
0: वो एक कहावत आपने सुनी है कि एक आर्ट भी तब निखर के आती है जब आर्टिस्ट उसकी प्रैक्टिस करता है, तो सेम हीलिंग है। हीलिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे आप एक दिन में हील हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। यहाँ किडनी केयर मंत्रा की मैं बात करूँ तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रखें, मोटापे से बच के रहें, वजन को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर नहीं रहे, क्योंकि किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यह निकाला ना तूने देसी मुर्गा, अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
3: थैंक यू।
4: यस, इट्स कंफर्म। हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
5: सर, R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में बैंक स्पोर्ट है।
4: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
6: Hey David, आजा जा, बड़ा

0: किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। इट्स अ मनी स्पिनर, ये मेरा चैलेंज है।
1: मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे?
0: नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे।
2: A country with billion people and le deke what 10 world class sportsmen and now by sanctioning RTF you mean to say ye jo sadkon pe ladte hain wo seedha international fighters se ladenge?
3: Sadkon pe gali cricket khelne wale national cricket team mein nahi dekhe aapne?
4: Indian sports ka har champion shayad sadak se uth kar aaya hai, ma'am.
5: Ex fighter Mr. Baz Rawat feels very strongly for the RTF.
6: I don't agree with Mr. Baz Rawat.
7: हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो।
8: ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी।
9: व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म।
10: स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट ओर योर डेड।
11: ए पीटर, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या?
12: अरे जाएगा नहीं, गया।

0: बात हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क?
1: या फॉरगेट इंग्लिश एंड ईसाई, या अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है।
0: तो फिर देर किस बात की? यहीं लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले आर्ट यूएफ फाइटर्स के नाम।
1: अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए।
0: मिस्टर पीटर ब्रिगांजा'स ऑफिस हैज रिफ्यूज्ड टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जर्मनी का हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट लुका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया।
2: That's fantastic. I've seen Luka fight. He's gruesome. He's very, very dangerous.
3: इधर दे।
4: बात खत्म, कंपटीशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया फिर।
5: आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि द ग्रेट लुका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकराया। कांटे की टक्कर होगी सर।

0: अब जो बात होने वाली है ना उसे आप बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं, वरना तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया से मैं अब यही जानना चाहूंगा, सिस्टर आप हीलिंग प्रोसेस में या मेडिटेशन प्रोसेस में एक लंबे समय से हैं, तो क्या वो प्रो टिप्स आप अपनी तरफ से आज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी उनके हीलिंग जर्नी के लिए या उनकी मेडिटेशन जर्नी के लिए, अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं या वो स्टार्ट कर चुके हैं बट वो कहीं फंस जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, तो उन्हें क्या ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाए?
1: बहुत अच्छा ये स्टेप तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज कहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा हम भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं लेकिन भागते भागते भी जब हम बीमार होंगे तो क्या करेंगे? फिर रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ना। अगर हमें रुकना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज देना जरूरी है। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोई भी बीमारी को हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दो चीज़ देते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा आपकी कोई ना कोई परहेज बताते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो सेम हमारे अगर माइंड को हमें हील करना है और बहुत तेज़ गति से भागना है तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड क्या करना है? सिर्फ अपने नेगेटिव थाट्स को। और किन चीज़ों को लेके आना है? तो पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव कुछ भी, भागते भागते भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि हमें शायद कहीं जाके एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भागना पड़ेगा या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को कुछ ऐसे थॉट देने हैं जो कि हमें हील कर सके। इस चीज़ को सभी लिसनर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सब लिसनर्स सुबह उठते ही अपने लिए कुछ पांच अच्छी बातें बोलें। वो है कि आप एक पावरफुल सोल है, आप वो कर सकते हैं, पहला थॉट। दूसरा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये थॉट मुझे उस काम को करने के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं। मेरे आसपास सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम इस थॉट को लेकर के आते हैं, आप पूरे दिन में, आपको पता है चैलेंजेस आने हैं, तो आपको थॉट सुबह क्या देना है? आज जो भी चैलेंज आएंगे, मुझ में भगवान ने इतनी शक्ति भरी है, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट हम सब अपनी लाइफ में, किसी के सामने एग्जाम है और उसको एग्जाम पास आउट करना है, बच्चा है कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको माइंड में सुबह उठ के कि मैं जो भी आज एग्जाम आएगा मेरे को वो सारा आता है, बहुत इजी आएगा, आप मन को थॉट दें। तो ऐसे कुछ थॉट हम दें तो आप देखें अपनी लाइफ को आप कितना स्मूथ बना लेते हैं।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये टिप देने के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। और आज ये टॉपिक जो हीलिंग था, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में मिलेगा। बट कल हम एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 6 बजे यहीं पर 89.6 रेडियो महारानी पर आपका भी वेट करेंगे कुछ हटके।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: में खाना तो अच्छा होगा।
1: खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार। 89.6
3: रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, नींद वही पुरानी वाली, आलस वही पुराने वाला, बस क्या बदला है, बदली है कैलेंडर ने तारीख, बदला है कैलेंडर ने मंथ। तो भाई देखिए, अब हम आ गए हैं अगस्त को टाटा बाय बाय कह के सीधा सितंबर में। तो आज 1 सितंबर है, यानी कि पहला दिन है इस महीने का। और पहला दिन जब आता है ना, कुछ भी पहला जब आता है, चाहे आप पहले वीक की बात कर लो, पहले मंथ की बात कर लो, या किसी भी चीज की बात कर लो, उसकी ना एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। नए गोल्स होते हैं, नए प्लान्स होते हैं, लेकिन ना कुछ चीजें पुराने वाली होती है, जैसे कि पुरानी वाली मंडे वाली नींद। वैसे तो आज ट्यूसडे में आ गए हैं और आज का दिन बहुत ही प्यारा है, बिकॉज आज एक नई एनर्जी के साथ आई हूँ मैं। आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ नया भी है और बहुत कुछ नया स्टार्ट भी होने वाला है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो भाई देखिए, सस्पेंस को बना कर रखेंगे, लेकिन अब आगे भी बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। तो बहुत कुछ है आज मेरे पास, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

देखिए बातें तो मैं बहुत सारी करने वाली हूँ, लेकिन बातें करने से पहले ना काम वाली बातें कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जान लेते हैं भाई आज का वेदर क्या कहता है फरीदाबाद का। तो अगर मैं वेदर की बात करूँ ना यार, बारिश शायद चली गई है, नहीं आ रही है बारिश, और ना गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, सनी सनी सा आज दिन रहने वाला है। ऐसे लगने वाला है यार किसी ने ना हीटर शायद से ऑन करके छोड़ दिया और बंद करना भूल गया है, मतलब कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 35।

डिग्री तक। सो भाई अगर घर से बाहर निकल रहे हैं ना, अपने साथ वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिएगा, बिकॉज हम जितना हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं ना इन गर्मियों में, उतना ही ज्यादा हम फिट रहते हैं। सो आज का दिन मैंने आपको बता दिया है, हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, गर्मी वाला दिन है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

हाँ जी, ये एक्ने देखकर आप अपना मुंह क्यों बना लेते हो? क्यों इतना मुंह सड़ा लेते हो जब भी कभी एक एक्ने आता है? भाई एक्ने है, इंस्टाग्राम का फिल्टर थोड़ी है कि आया और खत्म हो गया, फिर चेंज कर दिया। ये ना किसी न किसी रीजन से आता है, और इन रीजन को जानना ही ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई इसी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आज तारीख पर तारीख। और आज कैलेंडर की तारीख हमें बता रही है कि 1 सितंबर को एक्ने पॉजिटिविटी डे मनाया जाता है। अगर कैलेंडर ये डे मना रहा है, अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ना ये डे। तो आज का दिन का ना सिंपल सा मैसेज है, एक्ने होना नॉर्मल है। पिंपल्स की वजह से अपनी अपीयरेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी मत जज कीजिएगा, और ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इससे बेटर है कि आप अपनी स्किन को प्रायोरिटी बनाइए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा है तो सबसे पहले अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपने स्किन को पहचानिए, अपनी डाइट चेंज कीजिए, अपना स्लीप पैटर्न चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाइए। फिर देखिएगा जितने भी एक्ने है ना, धीरे धीरे ना गायब हो जाएंगे। और अगर एक्ने स्कार भी आते हैं ना, तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ दाग ना समय लेते हैं जाने में, और जब जाते हैं ना फिर से कॉन्फिडेंस वापस हो जाता है। तो जो चीज टेम्परेरी है उस चीज पर अपना इतना टाइम मत इन्वेस्ट करो यार, और ज्यादा एंजॉय करो आज का दिन, लेकिन एक बेटर डाइट के साथ। और बने रहो रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

कैप्सूल। कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

फिल्में भी क्या कमाल की होती है ना, कुछ फिल्म स्क्रीन पर खत्म हो जाती हैं और कुछ दिल में रह जाती है। अब जैसे ही मैं बात करूं हनुमान अंश की, तो एक ऐसी फिल्म है जो अब तक मेरे दिल में रह गई है। पता है फिल्म खत्म होने के बाद भी ना थिएटर छोड़ने का मन नहीं था। कुछ खास है इस फिल्म में। अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो विशाल चतुर्वेदी की ये स्पिरिचुअल ड्रामा नीम करोली बाबा के ऊपर है, उनकी लाइफ टीचिंग से इंस्पायर्ड है। और अगर मैं फिल्म की बात करूँ ना यार, इस फिल्म में एक सबसे अलग चीज ये है, इस फिल्म का कोई भी फोकस किसी भी तरह के एक्शन या फिर ग्लैमर के ऊपर नहीं है, बल्कि इसका फोकस है फेथ, लव, सेवा और स्पिरिचुअलिटी पर। और फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज पता है आपको क्या है? इमोशनल और डिवोशनल एटमोसफियर। सो जब ये फिल्म आ रही है थिएटर्स में, सबसे पहले शुरुआत ही इसकी हनुमान चालीसा से हो रही है और खत्म ये फिल्म हो रही है सीताराम पर। सो यार बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। अगर अब तक नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। और अगर ऑडियंस रिव्यू की मैं बात करूँ ना, तो ऑडियंस रिव्यू में भी स्टोरी को इंस्पायरिंग, टचिंग और वेल मेड कहा गया। और आपको पता है ये मूवी ना बहुत अच्छी जा रही है अब, लेकिन आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसी कोई पब्लिसिटी नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं था इस मूवी का। फिल्म ने स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू थिएटर्स को हाउसफुल किया है। पहले ना इस फिल्म को बहुत कम स्क्रीन्स दी गई थी, सिर्फ 40 स्क्रीन्स दी गई थी, और पहले के स्टार्टिंग हफ्तों में ना ये फिल्म फ्लॉप जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना ये फेथ और ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस है, इसने इस फिल्म को आज करोड़ों में ला दिया है। हिट जा रही है ये फिल्म। इस फिल्म के लिए आपको टिकट्स नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर अब तक नहीं देखी है ना तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। आप एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, बोर हो गए ना फरीदाबाद से, मन कर रहे ना कहीं बाहर जाने का। अब बाहर जाना है तो वही वीजा भी चाहिए होगा, और जिन लोगों के पास वीजा नहीं है ना बेचारे, उनके सपने ना सपने जैसे ले जाते हैं। लेकिन भाई साहब, सपने सच होते हैं ना, सपनों को सच करना पड़ता है। और इन्हीं चीजों के लिए ना मैं आज की अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना वीजा और वर्क परमिट के ना आप बाहर रह सकते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन एक कैच है। तो भाई नॉर्वे में जहाँ फॉरनर्स को वीजा, वर्क परमिट या फिर सेपरेट रेजिडेंट परमिट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर आपको परमानेंटली रहने के लिए ना आपके पास जॉब या खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मींस और सुटेबल अकोमोडेशन होना जरूरी है। सो देखिए, वीजा की तो जरूरत नहीं है, वर्क परमिट की भी जरूरत नहीं, लेकिन लेकिन वहां पर ना आपको रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी। और हाँ भाई, देखिए पहले ही बता देती हूँ आपको, जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे का स्वेल्वर्ट की लाइफ नॉर्मल नहीं है। एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर, मंथ्स ऑफ डार्कनेस, अनलिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी के बीच रहना पड़ता है, और यहाँ पर ना मैटरनिटी वार्ड भी नहीं है, इसलिए चाइल्ड बर्थ के लिए मेनलैंड नॉर्वे जाना पड़ता है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वीजा फ्री है, वर्क परमिट फ्री है, अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो। और अगर नहीं कर सकते ना, तो भाई फरीदाबाद से बेटर कुछ नहीं है। जहाँ आप रह रहे हैं ना, बहुत अच्छी जगह है, तो फरीदाबाद में रहिए, चिल कीजिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। म्यूजिक ब्रेक के बाद

हाँ जी, तो 9 to 5 से बोर हो गए हो ना और कमाना चाहते हो ना एक्स्ट्रा पैसा, अब कैसे कमाए? तो भाई देखिए, आज का बिजनेस मंत्रा मैं लेकर आऊंगी और आज का बिजनेस मंत्रा मैंने कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बच्चों के बर्थडे प्लान करने। लेकिन ये बच्चे ना ह्यूमन बेबी नहीं है भाई, ये बच्चे हैं अपने फर बेबी। अब आपको ये तो बताओ है ना कि पेट पेरेंट आजकल अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो आज का एक फ्रेश बिजनेस आइडिया मैं लेकर आऊंगी, पेट सेलिब्रेशन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो आप, जहाँ पर आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि पेट बर्थडेज हो गए, अडॉप्शन एनिवर्सरी हो गई, या फिर स्मॉल गेट टुगेदर हो गया, जहाँ पर आपको एक डेकोरेशन थीम रखनी है, पेट फ्रेंडली केक्स रखने हैं, फोटो शूट कराना है और साथ ही ना कस्टमाइज रिटर्न गिफ्ट्स भी देने हैं जितने भी फर बेबीज आने वाले हैं। तो देखिए भाई, बिजनेस एकदम ऑसम है और ये बिजनेस आज चलने भी वाला है, बिकॉज जो आजकल के पेट पेरेंट है ना, वो अपने खुद के बच्चों से ज्यादा ना अपने पेट से प्यार करते हैं। सो अब देख लीजिए कि किस तरह से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या नाम देना है। बिजनेस आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अगर चल जाता है ना तो मुझे आके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, तो बनी रही वीडियो हमारी 89.6 FM के साथ।

0: Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी body पे suit करेगा, ये बिल्कुल possible नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके fingerprints different बनाए हैं, हम सबकी body अलग है. हमारा daily रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

हाँ जी, आजकल सोशल स्यापा ले आई हूँ, और सोशल स्यापा ना यार हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है इन इमोजीज ने ना बाजी मार लिया। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके

अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ, वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक कि इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है, अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो बड़ी सरकेस्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सी रही है 2025 से लेके 2026 तक। और फिर हम बात करेंगे कि भाई मेरी इमोजी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए यार, मेरी जिंदगी में ना बहुत अकेलापन है, मैं सिर्फ ऑफिस के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे इमोजी की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे लिए तो इमोजी वेस्ट है, ठीक मेरे डेटा की तरह जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो आप भी बताइएगा, और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है। बताने के लिए आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर भेजनी है अपनी फेवरेट इमोजी। देखते हैं कि आप किस इमोजी को कितना प्यार देते हैं। और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

यार कई बार ना बहुत चीजें हमारे साथ बहुत गलत हो जाती है, हमें तो लगता है ना चीजें एक्चुअल में वैसे होती नहीं है। कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी ट्रिप पर गए हो, किसी होटल में गए हो स्टे करने के लिए, आपको लगा हो कि यार प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी, कितना ही मिला जाएगा, लेकिन जब बिल देखा ना तो सांसें थम गई। सो भाई देखिए ऐसा ही हुआ है अब दिल्ली की फैमिली के साथ, जो उदयपुर के ओबेरॉय होटल में गई, 10 दिन तक स्टे किया और इन्हें लगा कि भाई कितना ही मिला गया होगा, लेकिन जिस दिन चेकआउट करना था ना और बिल इनके पास आया तो बिल था अप्रोक्स 6 लाख रुपए का। और जब इन्होंने बिल देखा ना, अब आप सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा। सो यहाँ पर इन्होंने बोला कि बिल तो हम पे नहीं करेंगे, बिल पे करेगी हमारी एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी। सो भाई देखिए यहाँ पर ट्रेवल एजेंसी और इनके बीच ना झड़प हो गई, पुलिस वाले कंफ्यूज है भाई आखिर मैटर क्या था, कौन बिल पे करेगा, और अगर बिल पे नहीं हुआ तो केस किसके नाम होगा। ये इंसिडेंट ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों की 10 दिन की लग्जरी भी ले ली और बिल भी नहीं दिया। यहाँ की कश्मकश तो शुरू है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा घोटाला ना हो जाए ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर कहीं भी जाने वाले हो ना, जाने का प्लान कर रहे हो तो पहले ही ना एक आइटिनरी देख के जाइए, पहले ही अपना बजट फिक्स करके जाइए, और पहले ही ना किसी प्रॉपर्टी में स्टे करने से पहले ना वहाँ की सारा कॉस्टिंग वगैरह पता कर लो, सो दैट की एंड मोमेंट में ना आपके साथ ऐसा ना हो, बिकॉज आजकल ना रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, अगर आप ऐसे कुछ करते हैं ना भाई फिर पुलिस आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। सो ये मैं आपको अवेयर करने आई थी, इस तरह का स्कैम मत कीजिएगा। साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया मार्केट में। तो नया तरीका ये है मार्केट में, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपके कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है तो। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अनोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए। और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए, और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: एक मैं हूँ जो रियलिटी में नहीं जी पा रही, और कुछ लोग हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार बताया ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड से दूर रहो यार। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो, ये जो यूट्यूब के चैलेंजेस है ना, इसे आप रियल लाइफ में अप्लाई करने लग जाते हो और फिर क्या होता है, फिर बचती है बैंड, घर वालों की हार्ट बीट आप तेज कर देते हो। सो भाई यहाँ पे मैं फिर से एक ऐसी इंसिडेंट लेकर आ गई हूँ। मेरठ में 11 साल और 7 साल के दो बच्चों ने ना यूट्यूब पर सीक्रेट हाउस 24 आवर का चैलेंज देखा और सोचा क्यों ना भाई इस चैलेंज को किया जाए रिक्रिएट। फिर क्या था, ये दोनों भाई निकल गए घर से, दोनों भाई एक फार्म हाउस के पास गए, वहाँ पर एक हिडन स्पॉट बनाया और अपनी फैमिली से दूरना 24 घंटे का ये चैलेंज करने निकल पड़े। और यहीं पर ना फैमिली को लगा कि मेरे बच्चे, मेरे दो अनमोल रतन राम लखन कहीं चले गए हैं, और फैमिली का हो गया भाई बहुत बुरा हाल। इन दो बच्चों की कंप्लेंट की गई और करीब 2 घंटे बाद ना पुलिस ने इन्हें सेफली रिकवर करके इनकी फैमिली को सौंप दिया गया कि ये रहे आपके दो अनमोल रतन जो कि एक फार्म हाउस में एक हिडन चैलेंज कर रहे थे। तो फिर क्या था, घर वालों ने इन दो बच्चों की बैंड बजाई। लेकिन यार यहाँ पर ना गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, यहाँ पर गलती उन फैमिली की भी है, उन पेरेंट्स की भी है जो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं और जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते भाई, कि फोन दे दे बस अपना काम खत्म। तो भाई देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जेन जी नहीं है, ये जेन अल्फा और जेन बीटा है। सो इनके साथ में आपको जेन अल्फा और जेन बीटा वाली ही एनर्जी के साथ, जेन अल्फा और जेन बीटा वाली ही सोच के साथ कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज तो ना जाने फिर ये कौन कौन से चैलेंजेस आपको करते हुए मिलेंगे। और यही बताना चाहती कि अगर आप अपने बच्चे को फोन देते हैं तो प्लीज पेरेंटल लॉक लगाइए और ना नजर रखिए अपने बच्चों पर कि आखिर ये करते क्या है, और बहुत ज्यादा शांत है अगर मेरा बच्चा तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजे तक आपके साथ हूँ। बहुत सारी बातें कर रही हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्स है जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन अब ना मेरी फेवरेट चीज पर बात करने की बारी आ गई, यानी कि टाइम आ गया है आपके दिमाग की बत्ती जलाने का। और आज फरीदाबाद की पहेली मैं लेकर आ गई हूँ। तो भाई फरीदाबाद वालों, आज की पहेली है थोड़ी सी मिस्टीरियस और इसका कनेक्शन है हमारे शहर के पुराने हेरिटेज से। सो देखिए, मैंने पहेली बताने से पहले ही ना आपको एक हिंट दे दिया। ना महल ना किला, फिर भी सदियों पुरानी पहचान है मेरी। मेरे नाम में है एक गुंबद और कभी यहाँ एक बुजुर्ग सूफी से जुड़ी जगह भी हुआ करती थी। फरीदाबाद की हेरिटेज लिस्ट में भी मेरा नाम मिलता है। बताओ मैं कौन हूँ? सबको बताने कहाँ जाना है? आ जाइए फटाफट से इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना जवाब दीजिए। देखते हैं आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अका गुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल हैं। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

हेलो हेलो जी, बातें बहुत सारी करती हूँ लेकिन ना वक्त आ गया है आपको वो चीज बताने के बारे में जो आपको कभी नहीं पता था, यानी कि आप डू यू नो से सीधा आने वाले हैं डिड यू नो पर। आपको पता था कि रात को जब आप सोते हैं वो सिर्फ रेस्ट करना नहीं होता बल्कि आपका ब्रेन ना उस वक्त भी काम कर रहा होता है। नहीं पता था ना, आई नो, यही बताने के लिए तो आपको आई हूं आज। सो देखिए, आज का डिड यू नो है हमारे स्लीप के ऊपर। आपको पता है जब हम सोते हैं यानी कि हमारी स्लीप के दौरान जो हमारा ब्रेन है ना वो जितनी भी न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन है ना उनको प्रोसेस करता है, उनको करता है कंसोलिडेट, और यहीं से हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है उनको स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम किया है, आपने अपने पढ़ाई की है, आपने कुछ नया सीखा है, उसके बाद एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट की जो मेमोरी है ना आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस मेमोरी को दोबारा से रिडीम कर सके। सो भाई देखिए, अगर अभी तक आप अपनी नींद को सीरियसली नहीं ले रहे थे ना, सो प्लीज भाई लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना सोने की वजह से। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

आज का एक छोटा सा प्लांट और कल के सांसों के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यही कहा जाता है प्लांट्स के लिए और यही माना भी जाता है। अगर आज आप एक प्लांट लगाएंगे ना, तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। सो देखिए, यही इनिशिएटिव लेकर हम आ गए हैं, यानी कि रेडियो महारानी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। सो ये एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर हमारे साथ स्कूल कॉलेजेस आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ड्राइव पूरे 10 दिन रहने वाली है, यानी कि 10 दिन हम हर जगह को हरा भरा करने वाले हैं। हम अपने पास से प्लांट्स लेकर जाएंगे, स्कूल्स में लगाने वाले हैं, कॉलेजेस में लगाने वाले हैं, और यहाँ सिर्फ हम इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं होंगे, हम ये मौका आपको भी दे रहे हैं। आप भी बन सकते हैं ऑक्सीजन मास्टर, यानी कि अब आप आ सकते हैं रेडियो महारानी के ऑफिस, हम यहाँ पर आपको एक प्लांट देंगे और बस वो प्लांट आपको अपने एरिया में लगाना है। सो ये ड्राइव सिर्फ हमारी नहीं है, ये ड्राइव आप सबकी है, और इस ड्राइव में सिर्फ हम या आप नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करना चाहिए, और साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। सो इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो फरीदाबाद रेडी हो प्लांट टुडे ब्रीच टमोरो के लिए, और 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और बनिए ऑक्सीजन मास्टर। और इसी के साथ ही ना, एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, तो बता दिया जाए, बहुत टाइम से जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, यानी कि अब घड़ी आ गई है ये बताने की जो आज मैंने फरीदाबाद की पहेली पूछी थी, आखिर उसका आंसर क्या है। जवाब मुझे बहुत सारे आए हैं और जिनका पहला जवाब आया ना उनका नाम है मोहित। तो मोहित ने यहाँ अपना जवाब दे दिया है। मोहित ने कहा है अंजलि, जो पहेली तुमने पूछी है उसका जवाब है शेख मसा की दर का। सो मोहित, बहुत ही सही जवाब आपने दिया है, यानी कि आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो। और अगर इस जगह की बात करूं तो मैं ये ऑफिशियली लिस्टेड हेरिटेज लिस्ट में से एक है, यह हरियाणा की हेरिटेज लिस्ट में मेंशन की जाती है ये जगह। अगर आप नहीं गए तो जरूर देख कर आइएगा। और साथ ही बस ये बोलना चाहूंगी कि इसी तरह से फरीदाबाद को अपना प्यार दीजिए, फरीदाबाद को एक्सप्लोर कीजिए और मुझसे डेली आकर बताइए कि फरीदाबाद की आप किस जगह को कितना अच्छे से जानते हैं। और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी है। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, गाने भी सुना दिए, बेहतरीन बातें भी कर ली, बहुत ज्यादा हसीन। अब टाइम हो गया है मेरा आपको टाटा बाय बाय कहने का। अंजलि ऑन एयर लेकर आई थी सुबह 7 बजे, अब 11 बजने वाले हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के बाद अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मेरे टिफिन में क्या है। यार आज मेरे टिफिन में ना भिंडी आई है और मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरी मम्मी को ये भी पता है कि जो मेरी बेटी है ना, ये बाहर का खाना नहीं खाती। अगर मैं इसे भिंडी भी दूंगी ना, ये बेचारी भिंडी भी खा लेगी। तो देखिए, आज मुझे तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे लंच को लेकर। अगर आप में से किसी को भिंडी पसंद है ना, तो मुझे जरूर बताएगा। और बताने के लिए ना आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर ना मुझे ये जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम वही खाना लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी की पसंद यार अच्छी नहीं है खाने के मामले में। और इसी के साथ चलिए अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी बहुत सारी बातों के साथ। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर हमारे शोज को, और बने रहिए स्टेशन पे। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

चेक करते हुए जब घड़ी में 11 बजेंगे तो आपको एक बात समझ जानी है। यही बात की नारी नंबर वन शो की शुरुआत हो चुकी है मेरे यानी तुषार के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी। और आज सुबह ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत सुंदर कोट आया वुमेन से रिलेटेड, तो मैंने कहा यार वुमेन का शो है, नारी नंबर वन शो है, तो ये आपके साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है। वुमेन हैव विंग्स, हर एक महिला के पास अपने पंख खुद हैं उड़ान भरने के लिए, बट उड़ान सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि सोसाइटी जस्ट नीड टू स्टॉप क्लिपिंग देम। मतलब जो सोसाइटी है ना वो उन पे क्लिप लगा देती है कि एक महिला ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो उनके पंखों को क्लिपिंग कर दी जाती है, उड़ने नहीं दिया जाता उनको। तो हम उस सोसाइटी में हैं जहां पर कल्पना चावला ने स्पेस तक की उड़ान भरी है, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग रिंग में बहुत सारे लोगों को डिफीट कर दिया है, कितनी सारी महिला हैं जो आर्ट फॉर्म में अच्छा कर रही हैं, या फिर पायलट हैं, या फिर सीए हैं, या फिर डॉक्टर हैं। तो आज के टाइम में महिला जब पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं तो उस जनरेशन के पंखों पे आप क्लिपिंग तो नहीं कर सकते हैं, ये अपनी उड़ान खुद ब खुद भर लेंगी। ये मेरा बिलीव है, आपका भी ऐसा ही कुछ बिलीव होगा, नहीं है तो अपनी थोड़ी सी माइंडसेट को चेंज करिए और महिलाओं को एक लंबी उड़ान भरने में उनका साथ दीजिए। और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिए।

सोशल स्पॉटलाइट में आने के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये महिला ने स्पॉटलाइट में आने के लिए एक ऐसी चीज करी जो शायद किसी को नहीं करनी चाहिए। ये मंदिर के डोनेशन के नाम पे जाके बोल के आई है, मैं 4 करोड़ रुपए दूंगी ताकि आप मंदिर को बेटर फैसिलिटीज दे सकें, और वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं उनको 10-10 हजार इन 4 करोड़ के अलावा यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इन्होंने ये डोनेशन का पूरा अनाउंसमेंट कर दिया, मंदिर स्टाफ वहां पर खुश हो गया और वहां पर जितने लोग हैं वो खुश हो गए। वैसे ये महिला कहाँ की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। महिला जो है वो चेन्नई से बिलोंग करती थी, तो लोगों ने थोड़ा ट्रस्ट कर लिया कि चेन्नई वाले यार अपनी बात तो रखते ही हैं, थोड़े अमीर भी होते हैं तो ये दे सकती हैं, तो लोगों ने बिल्कुल ट्रस्ट करके इनकी बात मान ली। इन्होंने वहां पर 4 करोड़ का चेक भी दे दिया, पर जब वो चेक बैंक में लगाया गया तो असलियत पता चली कि इस महिला के खाते में मात्र 3 रुपए हैं। दीदी 4 रुपए तो रख लेती ना, ताकि वो 4 करोड़ 4 रुपए कंफ्यूजन मान लेते, 3 रुपए होने के बाद 4 करोड़ का चेक काट के दे आई हैं। क्या है ये? स्पॉटलाइट में आना है, माना कि आपको पता था कि ये खबर सोशल मीडिया पे जब आएगी तो लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप चर्चा में, बट ये नेगेटिव स्पॉटलाइट क्यों चाहिए? पॉजिटिव, अगर ये आपने 4 करोड़ सही में दे दिए होते और आपके खाते में होते तो जो पॉजिटिव स्पॉटलाइट में आप आते एक बात अलग थी, बट ऐसा ना करिए। किसी के जज्बात थे, किसी के इमोशन थे, वहां वो खुश हो गए थे कि यार 4 करोड़, उसके बाद 10-10 हजार इंप्लॉइज। अरे भाई साहब, आपने वक्त जज्बात हालात सब बदल दिए, क्या था मैडम ये? खैर, आपने जो किया फिलहाल आप स्पॉटलाइट पे बनी हुई हैं, पूरा सोशल मीडिया आप ही की चर्चा कर रहा है, जैसे मैं भी कर रहा था 89.6 रेडियो महारानी पे कुछ हटके।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे ज़रूरी बात एक राइट एडवाइस.

एक नारी अगर चाह ले तो वो पूरा संसार बदल सकती है। एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आज 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार आपके साथ शेयर करने जा रहा है, और जिसकी ये कहानी है उनका नाम है सुधा मूर्ति। और इनकी कहानी से हमें जो सबसे स्ट्रांग चीज सीखने मिलती है ना, कि अगर आप सोच ले और आप उस पर काम करें तो आप दुनिया बदल सकते हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी ना, तब सुधा ने डिसाइड किया था कि वो इंजीनियर बनेंगी। और उनको एक बार एक कंपनी का एड कैंपेन दिखा जिसमें लिखा था सिर्फ पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात उनके दिल पे चुभ गई। तब उन्होंने कहा इसी चीज का तो बदलाव हमको अपनी सोसाइटी में करना है, और उन्होंने इस कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाई और इतने प्रेशर के साथ उठाई कि उन्हें अपना ये कैंपेन बदलना पड़ा मजबूरन। बाद में उन्होंने एक बड़ा फर्म यहाँ पर खोला जहाँ पर उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, और ना सिर्फ इतना, उन्होंने स्कूल बनाए, लाइब्रेरी खुलवाई, हॉस्पिटल में जिम्मेदारी के साथ बहुत सारे लोगों की मदद करी। और आज जो सुधा की कहानी है ना, वो सिर्फ एक सक्सेसफुल इंजीनियर या ऑथर की नहीं है, बल्कि दया, ईमानदारी और सेवा की मिसाल भी है। उनकी कहानी हमें बताती है ना कि इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी बदल सकता है, चाहे वो दूसरों की जिंदगी क्यों ना हो। और इस कहानी से जो मैंने एक सीख ली है वो ये ली है कि आपकी सक्सेस आपकी पढ़ाई या आपकी जॉब नहीं है, बल्कि आपकी सक्सेस तब है जब आपके आसपास के लोग भी आपके साथ ग्रो करें। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

कभी आपने ऐसा देखा है जब आप किसी चीज के एंट्रेंस गेट पे बैठे हो ना तो आप नर्वस होने लग जाते हो, वैसे ही हम फेस्टिवल के बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे बैठे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और सितंबर मेरे लिए होता है फेस्टिवल्स का एंट्रेंस गेट। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो 4 तारीख हम यहाँ पर जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, 5 तारीख हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, देन कट टू 14 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम अक्टूबर एंटर करते हैं तो 2 तारीख सबसे पहले गांधी जयंती, और उसके बाद धीरे धीरे आगे नवरात्र वाला फील शुरू हो जाता है, और फिर इस बार अक्टूबर में दशहरा भी है तो दशहरे वाले फील मतलब नवरात्र के साथ दशहरा, और जैसे ही दशहरा खत्म होता है तो हमें इंतजार शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती है कि भैया अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद हमें एक्साइटमेंट मिल जाती है छठ पूजा की, छठ पूजा के बाद हमको एक्साइटमेंट मिल जाती है कि यार अब तो साल खत्म होने वाला है, तो अब इसके बाद का जो साल है ना वो हमको पता ही नहीं चलता, इतना फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल वाइब में हम आ जाते हैं। बट फेस्टिवल के टाइम हमारी जेब भी थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की होनी शुरू हो जाती है ना, खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस आप फरीदाबाद में हैं और आप बजट में बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं, कभी आपको लगता है ये कहाँ से मिलेगा ये कहाँ से मिलेगा, आप न्यूली यहाँ पर आएँ, क्योंकि मैं न्यूली आया हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो कभी आप किसी चीज़ को लेके फंसो तो सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना या रेडियो के इंस्टाग्राम पे आ जाना, रेडियो का इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा रेडियो महारानी के नाम से, मेरा मिल जाएगा इट्स आरजे तुषार के नाम से, वहाँ पर आके पूछ लेना बिना झिझक के कि तुषार फरीदाबाद में ये चीज़ कहाँ मिलेगी, मैं आपको गाइड कर दूँगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: हाँ जी, आज का सोशल स्यापा ले आई हूँ। और सोशल स्यापा ना यार, हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है, इन इमोजीज ने ना बाजी मार दी है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है, जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट। और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ, वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है। और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को, जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक कि इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है, जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो वो बड़ी सरकास्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सी रही है 2025 से लेकर 2026 तक। और फिर हम बात करेंगे कि भाई मेरी इमोजी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए यार, मेरी जिंदगी में ना बहुत अकेलापन है। मैं सिर्फ ऑफिस के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे इमोजी की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे लिए तो इमोजी वेस्ट है, ठीक मेरी डेटा की तरह, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो आप ही बताइएगा। और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है। बताने के लिए आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर भेजनी है अपनी फेवरेट इमोजी। देखते हैं कि आप किस इमोजी को कितना प्यार देते हैं। और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर। Best of Anjali.
1: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે, પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે.

0: 89.6 FM कुछ छक्के
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

आज नारी के हक की बात करते हैं और नारी के लीगल राइट्स की बात करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और एक ऐसी ही लीगल राइट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी लेडीज को नहीं पता होगा। जीरो एफआईआर का ये मींस होता है कि वैसे तो ये कहा जाता है कोई भी इंसिडेंट जिस एरिया में हो रहा है, जैसे एक्सीडेंट किस एरिया में हो रहा है या कोई भी आपकी स्नैचिंग किसी एरिया में हो रही है, तो आपको उसी एरिया के थाने में जाके कंप्लेन करनी होती है, जो रूल है वैसे। लेकिन वुमेन्स के लिए ये रूल चेंज करा गया है, वुमेन्स के साथ हो रहा है जीरो एफआईआर, मतलब आप किसी भी थाने में जाके, आप अपने घर के पास वाले थाने में जाके उस चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आपका कोई फैमिली इशू है या आपके साथ हैरेसमेंट का कोई केस है या आपके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी केस हुआ है, तो आप अपने नियर बाय किसी भी थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके साथ उस एरिया में हुआ है तो आपको वहीं के एरिया में जाके थाने में कंप्लेन करानी है। ये वुमेन्स के लिए एक अप्रोचेबल स्टेशन जो पॉलिसी है उसके लिए आया है, फिर वहां से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इमीडिएट वे में एक्शन लिया जाएगा, और हो सकता है वो लोग खुद वो जो पूरी एफआईआर बनाई हुई है या जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपके नियर बाय थाने के साथ शेयर कर दे। बट आपको ये नहीं करना है कि पहले ये थाने जा रहे हैं फिर वो थाने जा रहे हैं फिर वो थाने जा रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके जो भी आपके उस टाइम नियर बाय थाना है आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अक्सर एक वुमेन आके पूछ लेती है ना, तुम लोग ने ये तो बना दिया है, आखिर चाहिए क्या औरत को, बट एक आदमी को क्या चाहिए ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और एक आदमी को क्या चाहिए, इस पे आज मैं आपको एक छोटी सी डिकोड चीज करके बता रहा हूँ। देखिए, पूरा हफ्ता मंडे टू फ्राइडे अगर एक इंसान ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, तो वीकेंड में उसे चाहिए कि वो घर पे थोड़ी देर रिलैक्स करे। नॉट कि वीकेंड में आप उसके साथ एकदम से ये बोलने लगो, नहीं आज हमें शॉपिंग पे चलना है, आज हमें इस रिलेटिव के घर जाना है, इसके तो आप बोलोगे यार हमें भी तो वही दो दिन मिलते हैं, हमें भी तो वो दो दिन में ही करना होता है। तो एक प्लान आप दोनों मिलके बना लीजिए, यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सैटरडे तुम पूरा रेस्ट करो, संडे हम पूरा ये काम कर लेंगे, या तो सैटरडे भी तुम वर्किंग डे मेरे साथ बना लो, संडे तुम पूरा दिन रेस्ट कर लेना। रायदर दिन ये करना कि नहीं सैटरडे भी करेंगे संडे भी करेंगे, ऐसा कैसे होता है, दो ही दिन तो मिल रहे हैं, हम आज ये भी करने चलना है, आज ये भी करने चलना है, आज वो भी करना चाहिए। तो सिंपल सी बात होती है, मैं चाहता है ये अंडरस्टैंडिंग। और अगर वो आपसे ये कह रहा है ना उसे क्रिकेट खेलने जाना है, तो वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जाना चाह रहा है, क्योंकि वहां वो 10 दोस्तों से मिलेगा, हंसेगा थोड़ा।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

परफेक्ट एग्जाम्पल आपको वुमेन एम्पावरमेंट का आज देता हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। पहले जो हमारे रियलिटी शोज होते थे ना, वो बहुत मेल डोमिनेटिंग होते थे, वहां पर मेल ही जीत रहे हैं, मेल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अब नहीं, अब रियलिटी शोज में भी ये रूल आ गया है कि फीमेल्स इतने परसेंट होनी ही चाहिए, उनकी भी इतनी एंट्री, इतना पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। अगर मैं हसल की ही बात करूं तो वहां पर एक्जी जो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे रही है बाकी तीनों मेल स्क्वाड्स को, और

एमसी के स्क्वाड के जो परफॉर्मेंस है वो शायद एक लेवल अपग्रेड भी हो रहे हैं बाकी स्क्वाड के मुकाबले, चाहे वो हरमीत की बात करें चाहे बाकी किसी और भी परफॉर्मर की बात करें। और लास्ट वीक जो उनके परफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया उनको वहां पर परफॉर्म भी करके दिया। तो आप ये जो एक एंगल समझ रहे हैं ना, वुमेन अब हर फील्ड में अच्छा कर रही है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो रैप हो, चाहे आप और भी वुमेन के एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव में हो चाहे वो खेती में हो, हर जगह पे वुमेन अपने झंडे गाड़ रही है। और जहां बोलते थे ना अरे नहीं ये तुम महिला हो तुम नहीं कर पाओगी, वो हर वो चीज पॉसिबल करके दिखा रही है। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

कई बार जो चीजें आपको जैसी दिखती हैं वैसी असलियत में होती नहीं है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और आई लैशेज जो वुमेन की होती है, आज हम उसको डिकोड करेंगे कि ये कहाँ से आई और कैसे ये फैशन का ट्रेंड बन गई है। अपनी जो आई लैशेज हैं उन्हें इतना स्ट्रांग दिखाने का ये कॉन्फिडेंस सिंबल कहाँ से बन गया। तो देखिए, अगर मैं आई लैशेज एक्सटेंशन की बात करूँ तो इसकी शुरुआत जो है ना वो बहुत पुरानी है, और इजिप्ट से इसकी भी शुरुआत हुई थी, जैसे लिपस्टिक की शुरुआत इजिप्ट से हुई थी। और लगभग 4000 साल पहले ये महिलाएं और पुरुष दोनों करा करते थे, बट अब ये सिर्फ महिलाओं में ट्रेंड रह गया है। और जब ये दोनों करा करते थे तब इतना इनके पास इक्विप्ड चीजें नहीं थी, तो ये कोयला होता है ना, कोयले से अपनी आईलैशेस को और स्ट्रांग बना देते थे ताकि वो दिखे। और एक और बात कहते थे कि वो डार्क हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी तो नजर नहीं लगेगी। तो उस टाइम इस चीज से इसकी शुरुआत हुई थी। बट 90s में आते आते इसके साथ ये हुआ कि आर्टिफिशियल आईलैशेस जो है वो हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हो गई, क्योंकि वहां पर जो एक्ट्रेसेस थी उनको अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, कैमरे के सामने ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ये फेक आईलैशेस का ट्रेंड जो है ये वहां से आया, और धीरे धीरे ये आईलैशेस ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का सिंबल बनती चली गई। और आज जब लेडीज ये लगाती है ना तो अपना वो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए लगाती है, और कई लेडीज अपनी आंखों को और बोल्ड दिखाने के लिए और बहुत ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये आईलैशेस का यूज करती है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

हाँ जी, आज का सोशल स्यापा ले आई हूँ। और सोशल स्यापा ना यार, हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है, इन इमोजीज ने ना बाजी मार लिया। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है, जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट। और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है। और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को, जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है, जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है, अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो वो बड़ी सरकेस्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सी रही है 2025 से लेके 2026 तक। और फिर हम बात करेंगे कि भाई मेरी इमोजी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए यार, मेरी जिंदगी में ना बहुत अकेलापन है। मैं सिर्फ ऑफिस की मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ, जहाँ पर मुझे इमोजी की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे लिए तो इमोजी वेस्ट है, ठीक मेरी डेटा की तरह, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो आप भी बताइएगा, और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है।

आने के लिए आपको जो है ना रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर वहाँ पर भेजनी है अपनी फेवरेट इमोजी। देखते हैं कि आप किस इमोजी को कितना प्यार देते हैं, और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज मैं आपको एक ऐसी नारी से मिलाने जा रहा हूँ जिसने फरीदाबाद में रह के फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ हैं अंजलि। ये ग्रेटर फरीदाबाद से हैं, वुमेन्स क्लब की मेंबर हैं, और ग्रेटर फरीदाबाद में इन्होंने वुमेन्स क्लब के साथ मिलके कुछ यूनिक इवेंट्स जो हैं वो करे हैं फरीदाबाद की लेडीज को और एम्पावर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैम वेलकम है, और ये इवेंट्स के बारे में बताइए और आप इसका हिस्सा कैसे बनी ये बताइए।
1: क्लब को स्टार्ट करना ये एक सोच थी हमारी फाउंडर रजनी वर्मा जी, और ये जब उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया था 2 साल पहले, हमने जब ये थाना था कि हाँ हम ये क्लब स्टार्ट करेंगे, तो हम इसी सोच को आगे लेके चले कि हमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना है। जो लेडीज एक शादी के बाद या एक बेबीज होने के बाद जो एक गैप ले लेती हैं और उनमें एक पावर जो थी को पहचानना छोड़ देती हैं, अपना कॉन्फिडेंस जो छोड़ देती हैं, और कई ऐसी लेडीज हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो हमारा मोटिव ये था कि उनको हम आगे लेकर आएंगे और अपने साथ जोड़ेंगे और इसे और हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए। और क्लब में ही हम पिछले 2 साल से अच्छे से रन कर रहे हैं और हम कई तरीके के इवेंट्स करते हैं, कुछ सोशल इवेंट्स भी होते हैं, कुछ हम टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि हमने प्लांटेशन ड्राइव किया है हमने, और एजुकेशन सोसाइटी में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, और ओल्ड एज होम जाकर के उन लोगों को टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनकी नीड्स पूरी करना।
0: तो ये बात तो हमको यहाँ पर पता चल गई, बट और सारे सोशल वर्क्स भी हैं जो यहाँ पर वुमेन्स क्लब करता है ग्रेटर फरीदाबाद का, उसके बारे में बखूबी जानेंगे ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: स्पेशल इवेंट्स भी कराती हैं वुमेन्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन इवेंट्स के बारे में बताइए, वो कैसे प्लान होते हैं और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है?
1: सोशल इवेंट्स में हम लोग जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना सो दैट दे कैन ऑल्सो हाईलाइट, जैसे कि हम ग्रेटर फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं तो सोसाइटी में कई सारी लेडीज हैं जो कि घर से ही काम कर रही हैं, कोविड के बाद से ये बहुत हो गया है, मगर उनको घर से बाहर निकाल करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना, वो हमारे इवेंट्स करते हैं जिसमें उनको एक ही छत के नीचे आप बहुत सारी सोसाइटीज के साथ आप कनेक्ट होते हो, तो ऐसा आज तक कभी भी कोई इवेंट नहीं हुआ। तो हमारा एक इवेंट है बाय द नेम ऑफ जलसा, जिसमें हमने हर सोसाइटी से एक एक ग्रुप डांसिंग ग्रुप आया था और परफॉर्म किया था, दैट वॉज अ सुपर डुपर हिट, जस्ट बिकॉज की एक ही जगह इतनी सोसाइटी से लोग आए थे और उन्होंने परफॉर्म किया था।
0: थैंक यू सो मच अंजलि ये सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारी जितनी भी वुमेन्स हैं उनको आगे ऐसे एम्पावर करने के लिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सिंस एज उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल लाइफ एक्टिव हो रही है और वो बहुत गलत गलत फैंसी ट्रेंड्स गूगल और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से देख के फॉलो तो करते हैं एंड लैंडेड अप इनटू बिग प्रॉब्लम्स. तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज पेरेंट्स आर मच अवेयर एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे ज़रूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

एक नारी अगर चाह ले तो वो पूरा संसार बदल सकती है। एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आज 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार आपके साथ शेयर करने जा रहा है, और जिसकी ये कहानी है उनका नाम है सुधा मूर्ति। और इनकी कहानी से हमें जो सबसे स्ट्रांग चीज सीखने मिलती है ना, कि अगर आप सोच ले और आप उस पर काम करें तो आप दुनिया बदल सकते हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी ना, तब सुधा ने डिसाइड किया था कि वो इंजीनियर बनेंगी। और उनको एक बार एक कंपनी का एड कैंपेन दिखा जिसमें लिखा था सिर्फ पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात उनके दिल पे चुभ गई। तब उन्होंने कहा इसी चीज का तो बदलाव हमको अपनी सोसाइटी में करना है, और उन्होंने इस कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाई और इतने प्रेशर के साथ उठाई कि उन्हें अपना ये कैंपेन बदलना पड़ा मजबूरन। बाद में उन्होंने एक बड़ा फर्म यहाँ पर खोला जहां पर उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, और ना सिर्फ इतना, उन्होंने स्कूल बनाए, लाइब्रेरी खुलवाई, हॉस्पिटल में जिम्मेदारी के साथ बहुत सारे लोगों की मदद करी। और आज जो सुधा की कहानी है ना, वो सिर्फ एक सक्सेसफुल इंजीनियर या ऑथर की नहीं है, बल्कि दया, ईमानदारी और सेवा की मिसाल भी है। उनकी कहानी हमें बताती है ना कि इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी बदल सकता है, चाहे वो दूसरों की जिंदगी क्यों ना हो। और इस कहानी से जो मैंने एक सीख ली है वो ये ली है कि आपकी सक्सेस आपकी पढ़ाई या आपकी जॉब नहीं है, बल्कि आपकी सक्सेस तब है जब आपके आसपास के लोग भी आपके साथ ग्रो करें। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी है। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

कई बार जो चीजें आपको जैसी दिखती हैं वैसी असलियत में होती नहीं है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और आई लैशेज जो वुमेन की होती है, आज हम उसको डिकोड करेंगे कि ये कहाँ से आई और कैसे ये फैशन का ट्रेंड बन गई है। अपनी जो आई लैशेज हैं उन्हें इतना स्ट्रांग दिखाने का ये कॉन्फिडेंस सिंबल कहाँ से बन गया। तो देखिए, अगर मैं आई लैशेज एक्सटेंशन की बात करूँ तो इसकी शुरुआत जो है ना वो बहुत पुरानी है, और इजिप्ट से इसकी भी शुरुआत हुई थी, जैसे लिपस्टिक की शुरुआत इजिप्ट से हुई थी। और लगभग 4000 साल पहले ये महिलाएं और पुरुष दोनों करा करते थे, बट अब ये सिर्फ महिलाओं में ट्रेंड रह गया है। और जब ये दोनों करा करते थे तब इतना इनके पास इक्विप्ड चीजें नहीं थी, तो ये कोयला होता है ना, कोयले से अपनी आईलैशेस को और स्ट्रांग बना देते थे ताकि वो दिखे। और एक और बात कहते थे कि वो डार्क हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी तो नजर नहीं लगेगी। तो उस टाइम इस चीज से इसकी शुरुआत हुई थी। बट 90s में आते आते इसके साथ ये हुआ कि आर्टिफिशियल आईलैशेस जो है वो हॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हो गई, क्योंकि वहां पर जो एक्ट्रेसेस थी उनको अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, कैमरे के सामने ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ये फेक आईलैशेस का ट्रेंड जो है ये वहां से आया, और धीरे धीरे ये आईलैशेस ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का सिंबल बनती चली गई। और आज जब लेडीज ये लगाती है ना तो अपना वो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए लगाती है, और कई लेडीज अपनी आंखों को और बोल्ड दिखाने के लिए और बहुत ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये आईलैशेस का यूज करती है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

हां जी, आज का सोशल स्यापा ले आई हूँ। और सोशल स्यापा ना यार, हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है, इन इमोजीज ने ना बाजी मार दी है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है, जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट, और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ, वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है, और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक कि इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है, जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है अब हमें, अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो वो बड़ी सरकास्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सी रही है 2025 से लेकर 2026 तक। और फिर हम बात करेंगे कि भाई मेरी इमोजी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए यार, मेरी जिंदगी में ना बहुत अकेलापन है, मैं सिर्फ ऑफिस के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे इमोजी की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे लिए तो इमोजी वेस्ट है, ठीक मेरी डेटा की तरह जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो आप ही बताइएगा, और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है। बताने के लिए आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर भेजनी है अपनी फेवरेट इमोजी। देखते हैं कि आप किस इमोजी को कितना प्यार देते हैं। और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? लंच ब्रेक हो गया है ना, और मुझे आपसे ये पूछना है कि आज आपके डब्बे में क्या है, क्योंकि लंच ब्रेक शुरू होने से पहले ही ना मेरा मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने आज तोरी की सब्जी दी है। हाँ मुझे पता है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी सब्जी होती है, ग्रीन सब्जी है, खानी चाहिए, ये होता है वो होता है, बट प्लीज यार नहीं खानी मुझे तोरी। अब मेरा मूड खराब है तो मैंने सोचा मैं आपसे बात ही कर लूं, इसलिए मैं आ गई आपसे बात करने के लिए। हेलो, मेरा नाम है आरजे पलक और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी। अगले 2 घंटे में थोड़ी मेरी बकबक होगी, थोड़ी आपकी कंपनी मेरे साथ होगी, और हम बात करेंगे कुछ फनी, कुछ रिलेटेबल, कुछ ऐसा जो सुन के आप बोलो कि अरे यार ये तो लिटरली मेरी लाइफ है। और हाँ, अगर मेरी तरह आपका भी मूड खराब है ना तो उसको 100% ठीक करने की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि चैलेंज लेना मेरी बुरी आदत है और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। चलिए पहले गाना हो जाए और गाने के बाद खोलते हैं मेरी जेन ज़ी डिक्शनरी, देखते हैं आज मेरी जनरेशन ने क्या नया बना दिया है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को आपका कोई जेंजी फ्रेंड आपसे बोले कि आई एम अ बेबी, तो प्लीज उसको प्यार से ना गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेंजी डिक्शनरी में आई एम अ बेबी का मतलब बेबी होना नहीं है, मतलब ये आई एम योर बेबी वाला रोमांटिक सीन भी नहीं है। यहाँ आई एम अ बेबी का सिंपल सा ट्रांसलेशन है कि मुझसे नहीं होगा यार, मुझे नहीं आता, मुझ पे गुस्सा मत करना प्लीज। अच्छा इमेजिन करो कि ऑफिस में बॉस बोले कि ये प्रेजेंटेशन मुझे आज ही चाहिए, और सामने से रिप्लाई आई कि सर आई एम अ बेबी, मुझसे नहीं होगा, तो सर को ना तुरंत समझ जाना है कि एम्प्लॉय बेबी नहीं है, काम के मामले में वो बेबी है। मतलब जेंजी ने ना मुझे नहीं आता बोलने को भी एक क्यूट सा शॉर्टकट बना दिया, और ऑनेस्टली मैं खुद जेंजी हूँ तो मैं इसको जज नहीं करूँगी, मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ आपको कि हम लोग थोड़े अजीब हैं, हमें समझना इतना ईजी नहीं है।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benivar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी.

0: आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: यार एक मिनट, सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई बस 4 महीने। मतलब अभी तो हमने जनवरी में रेजोल्यूशन बनाया था कि इस साल अपना कमबैक होगा, नया रूटीन बनाएंगे, जिम जाएंगे, पैसे सेव करेंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे, सबको दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। और अब कैलेंडर सामने खड़ा है और बोल रहा है कि भाई जो तूने कमबैक की बात की थी, क्या हुआ उस कमबैक का, कहाँ है वो कमबैक? और सच बताऊं, मुझे लगता है ना कि हम सबके अंदर एक जनवरी वाला वर्जन होता है जो बहुत मोटिवेटेड होता है, और साथ ही साथ एक दिसंबर वाला वर्जन होता है जो बस कैलेंडर देख के बोलता है कि चलो कोई नहीं यार, अभी अगला साल है, अगले साल से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सुनो, 4 महीने बचे हैं, पूरा साल खत्म नहीं हुआ है। अगर कुछ पेंडिंग है तो क्या हो गया, अभी भी टाइम है अपना कमबैक करने का, क्योंकि अपना टाइम आएगा। लेकिन इस बार बस बोलना मत, करके दिखा देना। चलिए अभी गाना हो जाए, गाने के बाद मिलते हैं वही जो आसपास भटकते रहते हैं, 4 लोग। देखते हैं आज इसमें नया क्या है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में कहीं छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है। ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?
1: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि ये लोग क्या कहेंगे वाले लोग हैं, कौन कहाँ मिलते हैं, इनका कोई एड्रेस है, नाम तो बताओ इनका। क्योंकि बचपन से ना बस एक ही वार्निंग मिलती आई है कि ऐसा मत करना वरना लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो लोग हमारे डिसीजंस पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं उन्हें हमारी लाइफ के बारे में पता भी है कुछ। उन्हें नहीं पता कि हम किस चीज को लेकर टेंशन में हैं, किस रात नींद नहीं आई हमें, किस डिसीजंस के लिए हमने कितना सोचा, फिर भी हम उनके ओपिनियन के डर से करियर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने चॉइसेस तक कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और सबसे फनी बात यह है, अगर हम उनकी बात मान भी लेंगे ना तो भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है ना कहना। तो फिर उनकी अप्रूवल के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, उनके मुंह पे बोल दो यार कि आपका काम तो बस बोलना है, मैं तो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊंगी ना। बस जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे को म्यूट कर दिया ना, उस दिन अपनी आवाज पहली बार क्लियरली सुनाई देगी। तो आज ना बस मेरे कहने पे प्लीज ये काम करना कि लोगों को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना स्टार्ट कर दो, देखना लाइफ कितनी इजी लगने लगेगी। चलो अभी गाना हो जाए और गाने के बाद देखते हैं आज बॉलीवुड में क्या नया हंगामा हुआ है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

हाँ जी, आज का सोशल स्यापा ले आई हूँ। और सोशल स्यापा ना यार, हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है, इन इमोजीज ने ना बाजी मार ली है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है, जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट, और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ, वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है, और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक कि इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है, जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है, अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो वो बड़ी सरकेस्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
1: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
0: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: मैंने कल ही एक मूवी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई और वो ये है कि कुछ लोग ना स्क्रीन पर सिर्फ आते ही नहीं है बल्कि स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अक्षय खन्ना की, जिनका महाकाली में लुक देखने के बाद ना सोशल मीडिया पर ऑरा फार्मिंग वाली बात चल रही है। मतलब इतना पावरफुल करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो इस मूवी में। और मैं आपको बता देती हूँ कि महाकाली एक अपकमिंग तेलुगु माइथोलॉजिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट है और ये वही यूनिवर्स है जहाँ से हनुमान आई थी। और इस फिल्म में भूमिका शेट्टी महाकाली के रोल में नजर आएंगी, अक्षय खन्ना शुक्राचार्य का करेक्टर प्ले कर रहे हैं और रोहित सरफ भी की रोल में है। टीजर में देवास और असुरास का कंफ्लिक्ट, माइथोलॉजी, पावर और गॉड वर्सेस इविल का बड़ा सेटअप देखने को मिल रहा है। ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में आने वाली है। टीजर में अक्षय खन्ना को देखकर आधी यूथ का रिएक्शन ये हो गया है कि क्या ऑरा फार्मिंग वाइब दे रहे हैं ये। तो अगर आपका माइथोलॉजी, फैंटेसी और लार्जर देन लाइफ एक्शन पसंद है तो इस मूवी को अपनी वॉच लिस्ट में नोट कर लेना। और अब वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद मिलूंगी स्टाइल स्टूडियो में कुछ ऐसे फैशन टिप्स के साथ जो शॉपिंग के वक्त काम आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, हम गर्ल्स को ना वाइड लेग जीन्स बहुत पसंद होती है, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है, जीन्स वाइड है, टॉप भी वाइड है, और फिर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार जैसा लुक मुझे चाहिए था वैसा नहीं आया। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली वाइड लेग जीन्स ऑलरेडी लोअर हाफ में ना वॉल्यूम क्रिएट करती है, तो ऊपर थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप वाइड जीन्स पहनो तो ओवर साइज या बहुत लूज टॉप पहनने की जगह फिटेड टॉप, क्रॉप टॉप, वन शोल्डर या ऑफ शोल्डर टॉप ट्राई करना। ये वेस्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं और ओवरऑल आउटफिट क्लीनर और मोर बैलेंस्ड लगता है। और इसी के साथ एक बात याद रखना कि स्टाइलिश दिखने के लिए ना वार्डरोब भरना जरूरी नहीं है, जो भी कपड़े आपके पास है उसको सही तरीके से स्टाइल करना जरूरी है। तो अगली बार जीन्स के साथ टॉप चूज करते वक्त बस एक सेकंड रुकना, क्या ये आउटफिट मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं। चलिए, फैशन का फंडा तो समझ आ गया, अब थोड़ा फैशन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद की गलियों में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: फ्लेवर।
1: अच्छा, दर्शन करने के लिए ये नहीं कि हम किसी दूर जगह ही जाएं। हो सकता है आपके अपने शहर में ही कोई ऐसी जगह हो जो आपने अभी तक देखी ही ना हो। आज की जगह भी कुछ ऐसी ही है, श्री कृष्ण एंड नवग्रह टेम्पल, जो कि सेक्टर 31 फरीदाबाद में है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे ना, यहाँ का एटमॉस्फेयर और आर्किटेक्चर आपको साउथ इंडिया का किसी ट्रेडिशनल टेम्पल वाली फील दे सकता है, क्योंकि ये टेम्पल भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और नाम में ही नवग्रह है, तो आपको यहाँ नवग्रह के भी दर्शन मिलेंगे। तो अगली बार फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान बने और मूड हो थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करने का, तो सेक्टर 31 की इस जगह को भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि कभी कभी ना अपने शहर की हिडन जगह डिस्कवर करना भी मिनी ट्रेवल जैसा ही फील होता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग ना सक्सेसफुल होने से पहले ही ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सक्सेस उनके पॉकेट में रखी हो, और सच में शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने गोल्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम अक्सर ना पहले प्रूफ मांगते हैं खुद से कि पता नहीं ये होगा या नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर आप हर वक्त खुद को ये बोलते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो स्टार्ट करने की हिम्मत भी कहां से आएगी। क्योंकि माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि बस आंखें बंद करो और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। माइंडसेट का मतलब है कि अपने आप को केपेबल समझना, अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना और फिर उसके लिए एक्शन लेना। क्योंकि ड्रीम्स पहले दिमाग में बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो आपकी रियल लाइफ में प्रोसीड होती हैं। तो आज का रिमाइंडर सिंपल सा है, अपने फ्यूचर वर्जन पे इतना तो बिलीव करो कि उसके लिए आज एक स्टेप लेने की हिम्मत आ जाए आप में। अभी मुझे जाना पड़ेगा, फिल्मी फ्लेवर का आज का टाइम यही शटर डाउन करते हैं। मैं हूँ आरजे पलक, कल फिर मिलूंगी इसी वक्त इसी जगह, क्योंकि आप जानते हैं ना, अभी जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी। तब तक ये गाना आपके नाम, और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी। बाय बाय, टेक केयर।

हाँ जी, आज का सोशल स्यापा ले आई हूँ। और सोशल स्यापा ना यार, हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ इमोजीज की। भाई आपको पता है, इन इमोजीज ने ना बाजी मार दी है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो इमोजी है जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। अब आप भी वही इमोजी देख रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा हंसती है, यानी कि जो लाफ्टर वाली इमोजी है, जहाँ पर दो आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं हंसते हंसते, इतना तेज हंसती है वो। ना ना, यहाँ पे आया एक प्लॉट ट्विस्ट। और सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी को ना भाई फेमस कर दिया गया है। हाँ, वही सबसे ज्यादा रोने वाली इमोजी जो रोती है तो ऐसे लगता है कि कोई टंकी खोल दी है यार। 2025 के ग्लोबल यूसेज डेटा के मुताबिक लाउडली क्राइंग फेस दुनिया की मोस्ट यूज्ड इमोजी बन गया है। और इसने पीछे छोड़ दिया है एक पॉपुलर इमोजी को जो था हंसने वाला इमोजी। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि जो ये रोने वाला इमोजी है ना, इसका मतलब सिर्फ रोना नहीं है, इसका मतलब है ऑनलाइन कन्वर्सेशन में लोग इसे बहुत ज्यादा हंसने, एक्साइटमेंट और शॉक, एम्बेरसमेंट और यहाँ तक कि इमोशनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यार ये इमोजी कम धनिया ज्यादा रह गया है, जिसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं आजकल की कॉन्वर्सेशन की बात करूँ ना, तो भाई कॉन्वर्सेशन में शब्दों की जरूरत नहीं होती है अब हमें जरूरत पड़ती है इमोजी की। अगर अपने इमोशंस दिखाने हैं ना, वहाँ पर काम आती है इमोजी। तो ये हंसने वाले इमोजी से अब काम ना चलेगा, बिकॉज जब हंसने वाले इमोजी भेजे जाते हैं तो वो बड़ी सरकेस्टिक लगती है, ऐसा लगता है कि सामने वाले ना मजाक उड़ा रहा है। और वहीं अगर ये रोने वाले इमोजी भेज दो ना यार, सामने से लगता है कि भाई कितना प्यारा इंसान है ना, चीजों को फील कर पाता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपकी मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सी रही है 2025 से लेकर 2026 तक। और फिर हम बात करेंगे कि भाई मेरी इमोजी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए यार, मेरी जिंदगी में ना बहुत अकेलापन है। मैं सिर्फ ऑफिस के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पर मुझे इमोजी की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे लिए तो इमोजी वेस्ट है, ठीक मेरी डेटा की तरह जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो आप ही बताइएगा। और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है। बताने के लिए आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर भेजनी है अपनी फेवरेट इमोजी। देखते हैं कि आप किस इमोजी को कितना प्यार देते हैं। और साथ ही बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM पर। Best of Anjali.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: सीधा साधा है।
1: बोलो बोलो।
0: अजी लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी तुमसे?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: हस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियां ही आ गई है अब, क्योंकि रात भी जल्दी हो जा रही है, सुबह भी लेट हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्दी का एहसास दिला रही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव आप सभी के साथ आ गया है फिर से। सुबह सुबह जब जल्दी उठोगे ना, तो आप लोगों को वो खुशबू सी सुंघाई देगी, मतलब खुशबू सी आएगी, बहुत प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू जो सर्दियों में आती है अक्सर, और एहसास हो जाएगा कि हाँ मौसम सच में बदल रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो बता रही है मौसम बदल रहा है, और वो है लोगों का गला ख़राब हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। मैं अभी रिकवर हूँ, ऑल्दो मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो ये बॉडी पेन था ना, दैट वॉज अनबेरेबल। सच में पहली बार हुआ है मुझे ज़िंदगी में ऐसा वाला बॉडी पेन। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अगले चार घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ, 5 बजे से लेके 9 बजे तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप सभी के साथ रहता हूँ। एंड जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूँ कि देखो, फरीदाबाद में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना किसी भी चीज़ से, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी मुझसे बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फरीदाबाद में अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो आप लोग, जैसे जगह जगह पर कचरा फैला हुआ है, वो तो हड़ताल की वजह से है ना, मतलब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे तो फिर कौन साफ करेगा, हमारी जिम्मेदारी है अभी फिलहाल, तो करेंगे सब चीज़ों के बारे में बात, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर देश भर तक, देश भर से लेकर दुनिया भर तक सारी बातें होंगी, और उसके साथ चलेंगे खूब सारे गाने। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। सुनिए इस गाने को, वापस आकर बात करते हैं इस मानसून की।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सुबह भी हंसी है, शाम भी हंसी है, बस ये मॉनसून कैसा चल रहा है बस इसी का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ही इस बार हसीन नहीं है। तलविंदर की आवाज में था ये गाना और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव इन द हाउस। और कभी कभार ना ऐसे में चिल्ला देता हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है देखो कभी आप लोग मुझसे मिलोगे ना तो आप मेरे को बिल्कुल डिफरेंट इंसान पाओगे। मतलब आप बोलोगे यार तू तो रेडियो में डिफरेंट बोलता है, सामने से तू बिल्कुल अलग है। खैर मॉनसून की मैं बात कर रहा हूँ, और मॉनसून की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि डोंट यू थिंक कि मॉनसून में बारिश होती है? मतलब हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है मॉनसून में। इधर कहाँ हो रही है, पिछले मंडे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि पहले तो लग रहा था कि रक्षाबंधन वाले दिन भी बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद सैटरडे को भी बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद लगा संडे को भी बारिश हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खैर ये मॉनसून के साथ साथ हम लोग बात करना चाहता हूँ मैं नेपाल फ्लड्स के बारे में। जो भी था वो विजुअल जो था दैट वॉज टू डिवास्टेटिंग, मतलब हमारा सबका दिल टूट गया, दिल पसीद सा गया वो विजुअल्स देखने के बाद। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के साथ कितने सारे लोग लापता हैं, 2500 से ज़्यादा लोग लापता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स है, शायद रियल फिगर्स इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है देखो इस मुसीबत की घड़ी में हमें अपने पड़ोसी देश यानी कि नेपाल के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोग कैसे सपोर्ट दे सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अभी इस टाइम फ्लड रिलीफ के लिए वहाँ पर जा रही हैं। इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिया है, इंडियन आर्मी वहाँ गई है, इंडिया का NDRF गया है। और इसी के साथ साथ आप सभी को एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग खुद से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पर बैठे हुए लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप वहाँ की लोकेशन डालिए, वहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो वीडियोस डाल रहा है, जो वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो एक सॉलिडैरिटी के लिए आप लोग उधर कमेंट कर सकते हो, उधर जाके वीडियोस पे, उनकी वीडियोस पे, और बता सकते हो कि हाँ हम लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो नेपाल फ्लड्स थे, भगवान ना करे कभी भी ऐसा किसी और के साथ हो, बट वो वीडियोज़ देखने के बाद सच में दिल टूट गया था। चलिए मैं तो बस यही बोलूँगा भगवान से कि सब कुछ ठीक रहे और खैरियत में रहे सब लोग। और गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: SIR का फॉर्म सबने भर दिया था ना, सब लोगों ने ढंग से। फिर उसके बाद उसकी लिस्ट आ गई थी कि ये रहे नाम, ये रहा आपका एड्रेस। अगर उसमें भी कोई गलती थी तो 30 अगस्त तक की डेट दी गई थी कि आप लोग फिर से उस चीज़ को ठीक करवा सकते हो। मगर अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 सितंबर कर दिया गया 30 अगस्त की जगह, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। भारत का निर्वाचन आयोग और हरियाणा में जितने भी ये वोटर्स लिस्ट थी, तो उसमें जो पुनर्निरीक्षण कहते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूँ, बेसिकली आप लोगों ने जो भी डिटेल्स दी थी अपनी, और वो डिटेल्स वापस आई है कि हाँ आपका नाम, आपका पता, जो भी चीज़ करेक्शंस थी सब कुछ हो गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम तो सही देते हैं, बट वहाँ पर गलत अगर स्पेलिंग चढ़ गई है, या फिर एड्रेस गलत डल गया है, या फिर आपका कॉन्टैक्ट गलत डल गया, कुछ भी एनीथिंग ABCXYZ, तो आप लोग उसको करेक्ट करवा सकते थे। पहले डेट थी 30 अगस्त, मगर अब उसको 30 अगस्त की बजाय 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर तक आप लोग अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, और इसका जो निपटारा था ना वो 28 सितंबर तक हो जाना था, बट अब इसको चेंज करके 28 अक्टूबर तक होगा वो। तो डेट्स बढ़ा दी गई है, और अगर आपकी जो ये वोटर लिस्ट है उसका जो प्रकाशन है फिर से होगा, वो 3 अक्टूबर की जगह अब 6 नवंबर को किया जाएगा। तो अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि आपकी नाम कहीं गलत है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ जाके उसे करेक्ट करवा लीजिए। और जितने भी लोग 18 से ऊपर के हो गए हैं, भले ही कल हुए हैं, परसों हुए हैं, आज हुए हैं, या फिर होने वाले हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर बहुत सिंपल सा है, 1950। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका नाम में कुछ भी गलती है, तो आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट कीजिए। अब BLO का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को जो फॉर्म दिया था ना, तो दो फॉर्म्स थे, एक तो भर के आपको रिसीविंग लेनी थी, तो जो रिसीविंग ली है ना आपने उसमें BLO का नंबर भी है, तो उनको कॉल करके आप लोग कर सकते हैं, उन्हें कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोग अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ऐसी खूब सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता रहूँगा, और अभी इस गाने को एंजॉय कीजिए। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ।
1: I'm a pussy boy. Sorry.

ये सच में बहुत ज्यादा तंग किया है इसने और पूरे 5 दिन मेरे खाली है। वायरल पकड़ सकते हैं, वायरल मुझे पकड़ा था पिछले हफ्ते और बहुत ही। आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो कहीं भी जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो तो हो सके तो लोगों से दूरी बनाए रखना और 2021 वाला टाइम याद रखना, 2020 और 21 वाला टाइम याद रखना, क्योंकि अगर आप किसी के भी पास जाते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत जैसे कि आपको वायरल पकड़ सकता है, वायरल मुझे पकड़ा था पिछले हफ्ते और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो गई थी इस बार तो। एंड मैंने जितनों से भी पूछा जिस जिसको वायरल हुआ है, अगर आप में से भी कोई इंसान है जिसको वायरल हुआ है तो आप लोग शायद रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। ये जो बदन टूटा था ना इस बार, मतलब जो जोड़ों में दर्द हुआ था और हाथ पैर में दर्द हुआ था, बॉडी पेन जैसे कहते हैं, वो इस बार एक्सट्रीम था और जो हीट निकल रही थी ना बॉडी से वो तो अनबेरेबल थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी बुखार में कटी है, बट द थिंग इज जो इस बार वाला वायरल था ना, ये सच में बहुत ज़्यादा तंग किया है इसने और पूरे 5 दिन मेरे खाली है। जैसे कि ट्यूसडे स्टार्ट हुआ था और फ्राइडे तक मैं ठीक ठाक हुआ था, सैटरडे को बिल्कुल टोटली फाइन हो गया। बट द थिंग इज अगेन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस टाइम डॉक्टरों के पास भी लंबी कतारें लगी हुई है। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मेरा गला अभी भी ख़राब है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से अच्छे से बात करता रहूँ और गर्म पानी बार बार पी रहा हूँ तो सब कुछ ही चंगा हो रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि फरीदाबाद में बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये वायरल। और एक और चीज़ चला रहा हूँ जो साल 2021 की याद दिला देगा आप लोगों को, वो है ये गाना। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

बारिश का मौसम है और एक चीज तो इसमें पक्का होता ही है, यानी कि मॉनसून सीजन में एक चीज होना पक्का है। रेडियो का गौरव, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। शाम हो रही है और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, देखो फरीदाबाद में बारिश होती है, फिर उसके बाद जल भराव होता है जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ। और जल भराव अगर सड़कों पर हो तो वो तो एक दो दिन में निकल जाता है, बट अगर जल भराव घर के अंदर आसपास कहीं पर हो जाए, जैसे कि छत पर अगर कोई पुराना टायर पड़ा है या फिर कुछ भी ऐसा गमला पड़ा है, मटका पड़ा है जिसमें पानी जमा हो जाए, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें पनपते हैं मच्छर, तो डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं ब्रो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अब मेक श्योर कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी ऐसा पानी जमा ना हो रहा हो, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बीमारी है। ये इंसान का शरीर अंदर से तोड़ देती है। सामने वाले दुश्मन से तो आप लड़ भी सकते हो, एक बार को हाथ पैर चला लोगे, बट इंटरनल दुश्मन से कैसे लड़ोगे? तो इस मच्छर से बचने की ज़रूरत है, और मच्छर तो एक्सटर्नल है बट वो जो बीमारी दे के जाएगा ना वो इंटरनल हो जाती है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के खिड़की और दरवाजे शाम को खुले मत रखें, और इसी के साथ साथ पूरे बाजू के कपड़े पहने, मैं खुद नहीं पहन रहा वो अलग बात है, बट हाँ मैं प्रिकॉशन लेता हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट वाली चीज़ें होती है वो सबका इस्तेमाल कीजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही बहुत सारी अपडेट्स मैं लेकर आता रहूँगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक फेवरेट वाला गाना चला रहा हूँ, इक्का बादशाह और डीनो जेम्स की आवाज़ में, वो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट

इंस्टाग्राम को बंद किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ खुद से, मैं अपने मन से कोई भी बात बना के नहीं बोलता हूँ, मगर ये सुनने के बाद काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे। डोंट वरी, इंस्टाग्राम बंद सिर्फ रात को होगा 12 से 6। अब आप लोग सोचोगे ये उन लोगों के लिए सही है जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड है इंस्टाग्राम से, बट सोचिए जब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये इंडिया में नहीं होने जा रहा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, या रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो फरीदाबाद वालों? और जो अभी मैंने बात बोली ना वो सच्चाई है। एक्चुअली मैं देखो, रेडियो बंद नहीं हो रहा, इसके साथ साथ मैंने बात करी थी इंस्टाग्राम बंद नहीं हो रहा। डोंट वरी, इंडिया में तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं यूएस में कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए और बोला कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इंस्टाग्राम नहीं चलाने दिया जाएगा बड़े। तो कुछ कुछ एरियाज में ये चीज़ लागू करी जा रही है। आई डोंट नो इसके पीछे का मोटिव, बट जहाँ तक है मुझे एक ही चीज़ पता है कि मोटिव यही होगा कि लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। किससे? रील से। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं रात को रील देखने बैठता हूँ और वो रात के 5 मिनट मेरे सबसे हसीन 2 घंटे होते हैं। 5 मिनट से 2 घंटे कब होते हैं पता नहीं चलता। एक रील कितने सेकंड की होती है? 30 सेकंड 60 सेकंड की होती है, मान लेते हैं 1 मिनट की एक रील है। आपने अगर 10 भी देख ली तो 10 मिनट तो आपके यूं ही चले गए। फिर उसके बाद अगर आपने 60 रील्स देख ली तो 1 घंटा यूं ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग, अगर इंटरनेट है, अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो रील देखते देखते वक्त कब बीत जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभार ना ये ऐसे स्टेप्स भी लेने चाहिए, जैसे रात को 12 से 6 बजे तक इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं। ऐसा इंडिया में अगर हो जाए तो सोचो क्या होगा, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। क्योंकि क्रिएटर्स इकोनॉमी भी कुछ चीज़ होती है, लोग क्रिएटर बन के कमा रहे हैं, बट 12 से 6 तक बंद करना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोग 2-2 बजे तक तो सोते ही नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ स्कूल के बच्चे मिले थे मुझे, मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही पूछ लिया बच्चे कितने बजे सोते हो, तो देवर लाइक 1 बजे 2 बजे 1.5 बजे। मैंने कहा सीरियसली? और फिर वो सुबह सुबह उठ के स्कूल भी चले जाते हैं, आई डोंट नो हाउ। चलिए खैर, ये सब तो हो गई बातें, अभी चलेगा आप लोगों के लिए गाने। तो ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ आप सभी के साथ रेडियो का गौरव।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। क्या आपको सपना आया जिसमें आप भगवान से मिले हो सपने के अंदर, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, ऐसा काफी बार होता है कि हम लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग सपने में अपने मून की मूर्ति देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके सारे रुके हुए काम जल्दी से पूरे होने वाले हैं, आपकी जो जितना भी स्ट्रेस था ना, वो सब का सब खत्म होने वाला है, सुकून मिलने वाला है आपको और सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी है तो घर में खुशी आने वाली है और गुड लक का एक प्रतीक है। और अगर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जैसे काफ़ी बार होता है ना, हम लोग किसी जगह पर जाना चाहते हैं, सपोज आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे, आपको सपने में केदारनाथ आप पहुंच चुके हैं, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो और जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, भगवान ने कुछ दिया है सपने में, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इसका मतलब है पैसा और सक्सेस बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब लाइफ में होती है ना, तो फिर काफ़ी बार पॉजिटिवनेस आ जाती है, है ना? तो ऐसे सपने देखा कीजिए। देखो, सपनों पर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सपने ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जो दिन में सोचते हैं वही चीज़ हमारे रात में सपने में भी आती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है बस कुछ ही दिनों में, यानी कि आज है 1 तारीख और 5 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही इजीली। अब आप भी सोच रहे होगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सा वाला, क्योंकि अभी हमने

रिसेंटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या देखा है हम लोगों ने? देखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जेवलिन थ्रो में हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी में भी हुआ था, मगर अब कौन सा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वुमेन्स T20, हाँ एशिया कप वुमेन्स T20 मैचेस चल रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा इंडिया वर्सेस थाईलैंड में मैच हुआ था, पता है थाईलैंड को हरा दिया टीम इंडिया ने। वुमेन्स टीम इंडिया ने कुछ गजब करके दिखाया, 94 रन से जीते हैं टीम इंडिया, और इसके बाद अब मैच होने जा रहा है 3 सितंबर को हांगकांग के साथ। देखो थाईलैंड और हांगकांग ये टीमें बड़ी उभरती हुई टीम है, मुझे नहीं लगता इनकी टीम में कोई खिलाड़ी भी ढंग के होंगे, ये लोग सिर्फ पार्ट टाइम ऐसी क्रिकेट खेलने आ जाते होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर आप सभी को याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट यूएसए खेली थी, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएसए खेली थी, मैं मेंस कप की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की, तो उस टाइम यूएसए की टीम जब आई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा खेल जाएगी यूएसए की टीम, बट बहुत अच्छा खेल के गई। खैर इनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, 3 सितंबर को हांगकांग के साथ मैच है, देखते हैं कैसा रहेगा, जीत तो जाएगी टीम इंडिया बट कितने रन से कितने मार्जिन से जीतेगी ये वक्त बताएगा। और इसके अलावा उसके बाद मैच होने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ 5 सितंबर को। अब देखो टीम इंडिया एक तो जीत चुकी है, एक और जीत जाएगी, और अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट गलती से मान लेते हैं 1% चांस से अगर मान लेते हैं हार गई तो भी वो सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। सेमीफाइनल्स होने जा रहे हैं 10 और 11 सितंबर को, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों को फाइनल्स देखने को मिल जाएंगे संडे को जो है 13 सितंबर को। तो देखते हैं, वक्त बताएगा इस बार एशिया कप वुमेन्स का कौन लेकर आता है, इंडिया लेके जाती है, पाकिस्तान लेके जाती है, बांग्लादेश लेके जाती है, श्रीलंका लेके जाती है, या फिर अफगानिस्तान लेके जाती है, ये सब चीज़ें तो वक्त ही बताएगा। मगर अभी तो फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलाने का, तो उन्हीं में से एक प्यारा सा गाना तलविंदर बाजी की आवाज़ में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

ये दो गानों का मैशअप जो था ना वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था। नहीं नहीं सच में बहुत अच्छा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन, मैं बताता हूँ, रुको मैं अपने ना गाने के साथ बता दूँ गाना, एक मिनट रुको। हाँ ये चलो, आरजे गौरव। तो भाई 6:50 ऑलमोस्ट मेरी घड़ी में हो चुके हैं और आरजे गौरव रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड कौन सी मूवी देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो? नहीं नहीं बता दो मुझे, लेके चलूंगा आप लोगों को, सिर्फ लेके जाऊंगा, टिकट आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी मेरे लिए भी। खैर देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी ना मूवी लगी है हनुमान अंश और वो ना 31 जुलाई को लगी थी। और पता है आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? हनुमान अंश मूवी लगी फिर वो उतर गई और पूरे ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 25 सिनेमा थिएटर्स में रह गई थी। फिर पता नहीं क्या जादू चला और जादू ऐसा चला कि सब लोग अब देखने जा रहे हैं हनुमान अंश। और इस टाइम फरीदाबाद में बहुत सारी थिएटर्स पर लगी हुई है हनुमान अंश। नीम किरोड़ी बाबा जी के ऊपर ये आधारित है मूवी पूरी की पूरी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी वो आपको इस मूवी के थ्रू पता चल जाएगी। और मैं तो देखने ज़रूर जाऊंगा इस मूवी को, इस हफ्ते तो पक्का जाऊंगा। देखो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन कमिंग अलॉन्ग विद मी? हम लोग दोनों मिलकर जाएंगे या 3 या 4 या 5 पूरा ग्रुप मिलकर भी जा सकता है। नीम किरोड़ी बाबा जी की जो मूवी है हनुमान अंश, ये देखने चलते हैं। और अभी मैं यही बोलना चाहूँगा, ये मूवी के जितने भी रील्स या फिर ट्रेलर वगैरह देखे ना मैंने, सब देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग चुका है, तो मैं तो ज़रूर देखने जाऊँगा। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूँ और बस मैं यूँ गया और यूँ आया। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। पारू, मेरी पारू।

आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: Kaşıp.
1: सिनेमा का कैप्सूल।
2: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट

लोगो आरजे वापस जाग चुका है और अवेयर आपको इस तरह से कर रहा हूँ कि भाई आप लोग कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। आपके पास हो सकता है कोई ऐसा लिंक आए और बोले कि इस पे क्लिक कीजिए और आपको फ्री में आईफोन मिलने वाला है, फ्री में ये मिलने वाला है, फ्री में जूते मिलने वाले हैं। फ्री में तो कोई अपना बुखार ना दे, ये कलयुग है ब्रो। इस चीज़ को सोचो ज़रा, फ्री में कोई इंसान अपना बुखार भी नहीं देगा आप लोगों को। खैर ये सब बोलने की बात है और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़ोन जो है वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। कैसे? हम लोग अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो धड़ल्ले से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स। लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है ना, मम्मी सोशल मीडिया यूज़ कर रही होती है, फिर वो बोलती है गौरव 10 रुपये की बेडशीट मिल रही है। तो वो होता है एक ट्रैप, मतलब आपको जबरन ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा गुड टू बी ट्रू, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब सच हो ही नहीं सकती। ऐसे टाइप की स्कीम्स आती है सामने और कुछ लोग उसमें फंस भी जाते हैं। तो आपको कभी भी ऐसी चीज़ों पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपके फ़ोन में एक बार अगर उन्होंने एंट्री मार ली, स्कैमर्स ने अगर एंट्री मार ली आपके फ़ोन में, तो बहुत कुछ चुरा सकते हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमारा क्या चुराएंगे, आपका डेटा चुरा सकते हैं। आपके डेटा के थ्रू वो दूसरे लोगों को ठग सकते हैं, वो आपको पर्सोनिफाई कर सकते हैं, वो बन सकते हैं आपकी जगह। जैसे

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आज दोपहर में बहुत अजीब सी चीज हुई, काले बादल दोनों तरफ से आ रहे थे, दिल्ली की तरफ से भी और फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ से भी काले बादल आ रहे थे। एंड आई वॉज टू मच हैप्पी। मैंने कहा चलो इस उमस से तो राहत शायद मिली जाएगी आज। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई राहत नहीं मिली, उमस वैसी की वैसी ही थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, तहे दिल से दिल खोल के आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग की बात करने आया है हम लोग, मौसम विभाग की नहीं, माफ कीजिए, मौसम की बात करने के लिए मैं आया हूँ। और देखो फरीदाबाद में जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है वो अनबेरेबल टाइप का है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही। कैसा मॉनसून है ये, बारिश तो हो ही नहीं रही है। गिनती के 5 या 6 दिन की बारिश हुई होगी, मैं गिन सकता हूँ उन दिनों को, या फिर मैक्सिमम 10 दिन की हुई होगी। ठीक है, जुलाई 1 तारीख को मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, जुलाई और अगस्त पूरा निकल चुका है, 60 दिन निकल चुके, मगर मुश्किल से 10 दिन भी बारिश नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ अब बोला जा रहा है आने वाले 3 से 4 दिन आपको थोड़ी सी अच्छी वाली बारिश देखने को मिल जाएगी। और मैं बोल रहा था ना पहले मई जून में कि एल नीनो सुपर एल नीनो, बेसिकली वो रियल है, उसी की वजह से इस साल बारिश कम दर्ज हुई है और हम सब इस उमस वाली गर्मी में जी रहे हैं। खैर आप सभी को बता दूं आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री तक गया था, बट इट वॉज फीलिंग एज ए 41 to 42 डिग्री सेल्सियस। एंड कल की अगर बात करें तो कल आने वाला जो कल है वो 80 से 90% बारिश दिखा रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कितने परसेंट बारिश होगी, फिर उसके बाद वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चारों दिन बारिश दिखा रहा है, बट होगी कितनी ये तो वक्त बताएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना आदित्य भारद्वाज की आवाज में रेडियो महारानी पर।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

जब तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम से हालत खराब हो जाए और कोई पूछे क्या हाल है, तो मन से आता है हाल तो बुरे हैं, बट हम लोग बोल देते हैं एकदम बढ़िया। आरजे गौरव है आप सभी के साथ, रेडियो को गौरव कहते हैं उसको। और देखो आप सभी के साथ बैठा हूँ, रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, एंड 89.6 पर शो चल रहा है HR 896। और वक्त हो चुका है क्या हाल है, तबीयत खराब हो जाए तो लोग पूछते हैं क्या हाल है, हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया था पर फिर बॉडी ने बोला आज मेंटेनेंस मोड पे जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, खैर बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बस सैलरी टाइम पे नहीं आई, और इसके अलावा बॉडी घर पे है, इम्यूनिटी छुट्टी पे है, और मम्मी का काढ़ा फुल टाइम ड्यूटी पे है। बुखार हो जाता था ऐसे ही करते ना घर वाले, नई नई चीज़ें, नए नए नुस्खे निकाल के ले आएंगे, फिर डॉक्टर ने जो दवाई दी होगी वो भी खानी पड़ती है। किसी की तबीयत खराब हो ना उससे पूछो क्या हाल है, वो बोलता तबीयत खराब है। अब समझ आ रहा है कि हेल्दी रहना भी एक फुल टाइम जॉब है। डॉक्टर बोल रहा है कि रेस्ट करो और फोन बोल रहा है एक और रील देख लो, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है ना उसके बाद उसके पास कुछ काम नहीं होता, वो दिन भर रील स्क्रॉल करता है। बुखार में इतनी गर्मी लग रही है कि एसी भी मुझे देख के पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी नहीं माफ कीजिए ठंड लग रही है, और एसी चालू करते ही डबल ठंड हो जाती है, बट एसी और पंखा ना चालू करो तो फिर गर्मी लगती है। ये तो है बुखार के लक्षण। और इसके बाद खाने का मन नहीं करता, ना उठने का मन करता है, बस मेडिसिन का अलार्म टाइम पे आ रहा है, हाँ बस मेडिसिन खाओ बैठे रहो। बॉडी का सर्वर डाउन है भाई, डॉक्टर को आईटी सपोर्ट समझ के कॉल करने का मन कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही आधी बीमारी खुद से ही ठीक हो जाती है। होता है ना कि डॉक्टर के पास आ गए अब तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर अगर किसी की तबीयत खराब है उससे पूछ लो क्या हाल है, वो बोलता है तबीयत खराब है लेकिन ऑफिस को मैसेज करो, तो वो पूछते हैं मीटिंग अटेंड कर लोगे, ये काम कर लोगे, भाई बस जिंदा हूँ, कंबल में रैप्ड हूँ और रिकवरी का ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। तो ये तो था आज का क्या हाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर बात करें हम लोग और बताएं कि क्या हाल है, तो नंबर है हमारा एक सिंपल सा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए यही गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

क्या आपको पता है 1994 में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आया था ए आर रहमान द्वारा, उर्वशी उर्वशी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और वो गाना ना आई डोंट नो व्हाई बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, एंड बहुत कहते ना कुछ इमोशंस होते हैं, उस गाने को बहुत सारी जगह और भी लिया गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ रेडियो का गौरव आप सभी के साथ, और हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिक डिकोड की। तो आज जो हम लोग म्यूजिक डिकोड करने वाले हैं वो है गाना उर्वशी सॉन्ग, उर्वशी उर्वशी बाय एआर रहमान, जो 1994 में आया था। एक फील गुड एंथम कह सकते हैं उसको, सोशल कमेंट्री कह सकते हो, कोई क्वर्की ह्यूमर उस गाने में था, एक स्ट्रेस रिलीविंग, क्या लाइन थी, टेक इट इजी पॉलिसी। तो बेसिकली आप सभी को ये दिखाया जा गया था कि जितना स्ट्रेस है ना उस सबको हटा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को मिला के बनाया था, क्रोमेटिक इंडियन रागाज उसमें यूज़ किए गए थे, इलेक्ट्रिक पर्कशंस का यूज़ किया गया था, और सारंगी भी यूज़ की गई थी इस गाने के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है ये गाना ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था, क्योंकि ऐसा ही एक और गाना था जो बाहर फिल्म में भी यूज़ किया गया था, फिल्म लायन थी और उसमें विलियम मींस विल आई एम, उन्होंने एक गाना गाया था इट्स माय बर्थडे इट्स माय बर्थडे। सुना है वो गाना? नहीं सुना ना, तो चलिए उर्वशी तो सुन सकते हैं आप लोग। आई मीन ओरिजिनल वाला ट्रैक तो शायद मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, मगर हाँ मिक्स मैशअप जरूर प्ले करूंगा आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को, मिक्स मैशअप शेप ऑफ यू एक्स उर्वशी।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो?
0: नहीं, क्यों? मैंने सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं कभी आप

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए अनपिक्ड

जो इस बार वाला वायरल था ना, ये सच में बहुत ज्यादा तंग किया है इसने, और पूरे 5 दिन मेरे खाली है। जैसे कि ट्यूसडे स्टार्ट हुआ था और फ्राइडे तक मैं ठीक ठाक हुआ था, सैटरडे को बिल्कुल टोटली फाइन हो गया। बट द थिंग इज अगेन, ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इस टाइम डॉक्टरों के पास भी लंबी कतारें लगी हुई है। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मेरा गला अभी भी खराब है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से अच्छे से बात करता रहूँ और गर्म पानी बार बार पी रहा हूँ, तो सब कुछ ही चंगा हो रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि फरीदाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है ये वायरल। और एक और चीज चला रहा हूँ जो साल 2021 की याद दिला देगा आप लोगों को, वो है ये गाना। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले

प्रोजेक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। क्या आपको सपना आया जिसमें आप भगवान से मिले हो सपने के अंदर, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, ऐसा काफी बार होता है कि हम लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग सपने में अपने मून की मूर्ति देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके सारे रुके हुए काम जल्दी से पूरे होने वाले हैं, आपके जो जितना भी स्ट्रेस था ना वो सब का सब खत्म होने वाला है, सुकून मिलने वाला है आपको और सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसमें, जैसे कि अगर आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी है तो घर में खुशी आने वाली है और गुड लक का एक प्रतीक है। और अगर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जैसे काफ़ी बार होता है ना, हम लोग किसी जगह पर जाना चाहते हैं, सपोज आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे, आपको सपने में केदारनाथ आप पहुंच चुके हैं, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो और जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, भगवान ने कुछ दिया है सपने में, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इसका मतलब है पैसा और सक्सेस बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब लाइफ में होती है ना, तो फिर काफ़ी बार पॉजिटिवनेस आ जाती है, है ना? तो ऐसे सपने देखा कीजिए। देखो, सपनों पर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सपने ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जो दिन में सोचते हैं वही चीज़ हमारे रात में सपने में भी आती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: क्या आप लोग जिम जाना चाहते हैं, क्या आप लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव इज विद यू, यानी कि जिम ब्रो आ चुका है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। और मैं कोई देखो बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट हाँ जिम की टिप्स तो आपको दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं भी बहुत सालों से जिम जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है इतना मेरे पास, कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस है। खैर, अपने एक्सपीरियंस गिनाने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे, आप लोगों को ये बस बोलना चाहता हूँ कि मेरा जिम जाना कैसे हुआ था। देखो, हर किसी का फर्स्ट डे होता है, डे फर्स्ट होता है, तो उस चीज़ को आपको भी लगाना है। मतलब आप देखो, अपने जिम जाइए, अपने घर के आसपास वर्कआउट करने जाइए, अपने घर के आसपास पार्क में जाइए। सबसे पहले दिन क्या होगा, बहुत बोरियत फील होगी, तो पहले दिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है जिम के अंदर। पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट आपको वर्कआउट करके वापस घर आ जाना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको टाइम इंक्रीज करके उसको 45 to 1 आवर करना है धीरे धीरे। और अगर आपको लगता है कि पहला दिन ही नहीं जा पा रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने किसी दोस्त के साथ मिलके आप लोग जिम ज्वाइन कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक इंसान तो जरूर बोलेगा, नहीं यार बस हो गया यार, और नहीं करते, चलते हैं। तो और एक इंसान जरूर होगा जो बोलेगा चल चल चल वर्कआउट करते हैं। तो दोनों में से ऐसा इंसान जरूरी है, मतलब देखो एक इंसान होना चाहिए जो पुश करे आपको हर बार। तो दोस्त भी ऐसे ही बनाइए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग जिम जाने की सोच रहे हैं या फिर वर्कआउट शुरू करने की सोच रहे हैं, जस्ट गो टू अ पार्क, पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, एक वॉक एक राउंड मारिए, फिर उसके बाद आप अगर हो सकता है तो दूसरा राउंड भी कंप्लीट कीजिए। और अपने आप को ना टारगेट्स दीजिए, लाइक टारगेट्स ऐसे कि मुझे जो सामने वो पेड़ दिख रहा है मैं वहाँ तक वॉक करूँगा, या फिर अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में आप टारगेट लीजिए, अपने आप से टारगेट दीजिए अपने आप को कि आज मैं 5 किलो का डंबल उठा रहा हूँ तो कल मैं 7.5 किलो का डंबल उठाऊंगा, कल ना सही अगले हफ्ते मैं 7.5 का ज़रूर उठाऊंगा डंबल। और ऐसे ही करते करते करते करते आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, बस टारगेट बना के रखिए। और मैं तो एक और आइडिया देता हूँ आप लोगों को, एक काम कीजिए, कॉपी ले जाया करिए। कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नोट्स तो अपने फ़ोन में भी बन जाते हैं, बट कॉपी में जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस देख रहा हूँ। तो उस चीज़ को ज़रूर करिए और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। अभी फिलहाल एक गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लव।

मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सभी से कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के बारे में जो परसेप्शन बनाया हो मन के अंदर, पहली बार आप उससे मिले आपने मन में सोचा कि ये इंसान तो ऐसा सा दिख रहा है, शातिर सा दिख रहा है, और वो असलियत में भी शातिर सा निकल गया फिर उसके बाद आप लोगों को लगा होगा कि यार मैं तो माइंड रीड कर लेता हूँ, मैं तो इंसान की परख करना अच्छे से जानता हूँ। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो रेडियो को गौरव आप सभी का स्वागत करता है, और रेडियो को गौरव को ऐसा लगता है कि ये ना कभी हम लोगों को इंट्यूशन हो जाती है, हम लोगों के मन में ना कभी कभार पहले से ही आवाज़ हो जाता है हम लोगों को कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, और अपने लिए नहीं होता ये कभी भी, ये होता हमेशा दूसरे इंसान के लिए। हो सकता है आपका कोई अच्छा दोस्त हो, उसकी लाइफ में कोई लड़की आए, और फिर वो तो बिल्कुल प्यार में पागल है, मगर आपके मन में पहले से ही सवाल आ रहा है, पहले दिन से ही, कि ये लड़की इस लड़के के लिए ठीक नहीं है, और आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं और आपका दोस्त नहीं मानता। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो दोस्त रोते रोते आपके पास आता है, आप बस ये बोलते हो कट गया खैर ये सब चीज़ें तो होती रहती है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, जितने भी लोगों को इंट्यूशन होता है, आभास होता है ना कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो हमेशा इंट्यूशन पे ध्यान से वर्क कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं ना वो हो भी जाता है। तो कभी भी नेगेटिव मत सोचना, पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि कभी आपके मन में किसी इंसान के लिए नेगेटिविटी आए ना, तो उसको लेके मत बैठ जाना, सामने से जाके कन्फ्रंट करना या फिर कोशिश करना कि आप उसकी सच्चाई जान सको। बस इतना सा कहना चाहूँगा, और आज के प्रवचन होते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आप सभी से फिर से कल शाम। कल किस टाइम? 5 से 9, तो मेरा हो गया है यहाँ से वैसे जाने का टाइम। टाइम तो आप सभी को बता दे, बहुत लेट हो गया है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से शाम 5 से 9, 5 से 8 बोला गया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है 5 से 9 मिलूंगा, वापस आऊंगा विद HR 896, और अभी वापस आएगी गीत विदेश कुबाजियाँ, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने लेकर आएगी आप लोगों के लिए। मगर अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, अजूल एक्सिरा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। बाय बाय, दिस इज RJ गौरव साइनिंग ऑफ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रात के इस वक्त में ना कुछ बातें कहने के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें बस महसूस होती हैं और कुछ अल्फाज बिना इजाजत लिए सीधा दिल तक उतर जाते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं उन अल्फाजों से जो शायद किसी शायर ने कागज पर लिखे थे, लेकिन असल में वो हमारी जिंदगी के लिए थे। वेलकम टू इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं शायरों की, उनकी शायरी की और उस एहसास की जो कभी उनके जमाने का था लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही जिंदा है। आज की रात बात होगी एक ऐसे ही शायर की जिनकी शायरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये है शकील आजमी साहब, एक ऐसे शायर जिनके अल्फाज आपको सिर्फ मोहब्बत नहीं सिखाते, वो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं। वो कहते हैं, खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। और शायद आज की हमारी जनरेशन को इससे बेहतर सलाह चाहिए ही नहीं। हम हर चीज से बच रहे हैं, हार्ट ब्रेक से, रिजेक्शन से, लोगों के ओपिनियन से, और इन सब से बचते बचते हम अपनी ही जिंदगी से तो नहीं बच रहे। तो आज की रात थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा दिल खुला छोड़िए, शायद कोई शेर आपको वो बात कह दे जो आप खुद से भी नहीं कह पा रहे हैं। इश्क शायराना में आज की रात शकील आजमी के नाम, और अब इस एहसास को एक खूबसूरत गाने के साथ आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, क्योंकि रात अभी बाकी है, बातें बाकी हैं और गाना भी आपका इंतजार कर रहा है।

वेलकम बैक इश्क की उसी खूबसूरत रात में जहाँ कुछ शेर सुनकर लगता है अरे ये तो मेरे लिए लिखा गया है। मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां रेडियो महारानी 89.6 FM पर। आज शकील आजमी साहब की नज्म को थोड़ा महसूस करते हैं। कहा है इन्होंने खुद को इतना भी ना बचाया कर बारिशें हो तो भीग जाया कर। कितनी छोटी सी बात है लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसमें छिपी हुई है। हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता जबकि पड़ता है। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ जबकि

ठीक नहीं होते। हम किसी को मिस करते हैं लेकिन मैसेज नहीं करते, किसी से प्यार करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, किसी के साथ हंसना चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि मुस्कुराना भी सोच समझ कर करना पड़ता है। और फिर वो कहते हैं, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों ही बातों में मुस्कुराया कर। मतलब हर बात का सलूशन सीरियस होना नहीं है, कभी कभी बातों ही बातों में मुस्कुरा भी लिया करो। किसी की बात अच्छी लगे तो बता दिया करो, किसी की मौजूदगी दिल को सुकून दे तो उसे महसूस किया करो, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद वही होता है जो हमने प्लान नहीं किया होता। तो आज की रात अगर बारिश हो तो भीग जाइए, अगर किसी की याद आए तो याद आने दीजिए, और अगर दिल मुस्कुराना चाहता है तो उसे रोकिए मत। स्टे ट्यून इश्क बाजियां पर, क्योंकि अगला एहसास भी आपका यही इंतजार कर रहा है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

कभी कभी हमारी जिंदगी में दर्द आता है ना, तो हमें लगता है कि बस अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन शायद दर्द हमेशा हमें तोड़ने नहीं आता, कभी कभी वो हमें बनाने भी आता है। इश्कबाजिया में एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की रात हम पढ़ रहे हैं शकील आजमी साहब को, थोड़ा सा उनकी नजर से और बहुत सारा अपनी जिंदगी की नजर से। वो कहते हैं, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से ना बहाया कर। क्या खूबसूरत बात है। हम दर्द को हमेशा वीकनेस समझते हैं, सोचते हैं रोना मतलब हम कमजोर हैं, किसी को याद करना मतलब हम मूव ऑन नहीं कर पाए, किसी के जाने के बाद टूट जाना मतलब हम स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन शायद दर्द इस बात का सबूत है कि आपने कभी किसी चीज को पूरे दिल से महसूस किया था। हर दर्द को छुपाना भी जरूरी

पहुंची हैं, तो उस एहसास को थोड़ा सा म्यूजिक देते हैं क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई है। आप रेडियो महारानी 89.6 पर बने रहिए। अगला गाना शायद आपके दिल की वो बात कह दे जो आप खुद से नहीं कह पाए हैं।

चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्त्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियां, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियां बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

फिर से स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती। स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकाबुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे, यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं, कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून्ड, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर

जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: रहना, आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना।
1: सिनेमा का कैप्सूल। कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं, और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग, और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वह नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है

आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान।